मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

1898 का साल था। एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में उस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने भरी अदालत में जज के सामने कहा, क्या इससे भी कोई कठोर दंड है? यदि हाँ तो मुझे वही दिया जाए। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका करने वाले और आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले वो महान क्रांतिकारी थे दामोदर हरि चाफेकर, जो भारतीय स्वाधीनता इतिहास के पन्नों में दर्ज चाफेकर बंधु की त्रयी के सबसे बड़े भाई थे। इस क्रांति त्रिवेणी की सबसे प्रबल धारा, जिन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी इस पुनीत महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर, इन तीनों सगे भाइयों का बलिदान एक दुर्लभ घटना है। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही हैं। दामोदर हरि चाफेकर का जन्म 24 जून सन 1869 को पुणे के पास स्थित चिंचवण नामक स्थान पर हुआ था। ये एक चित्तपावन ब्राह्मण परिवार था, जो मूलतः कोंकण के बेलानेश्वर से संबंध रखता था। उनके पिता का नाम हरि विनायक चाफेकर और माताजी का नाम द्वारका चाफेकर था। पिता हरि विनायक एक प्रसिद्ध कीर्तनकार और कथावाचक थे। यही कारण है कि दामोदर हरि चाफेकर की विशेष रुचि गायन तथा काव्यपाठ में थी। दामोदर हरि चाफेकर बचपन से ही खेलकूद और व्यायाम के शौकीन थे। लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने अपना शरीर अत्यंत बलिष्ठ बना लिया था। उनके मन में देश के प्रति अगाध प्रेम था और वो युवाओं को भी लगातार प्रेरित किया करते थे। एक बार उन्होंने पुणे में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, आज आवश्यकता है कि हम फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों को छोड़कर चट्टानों पर चढ़ाई और अस्त्र शस्त्र चलाने जैसे कामों में पारंगत हों, ताकि समय आने पर हम देश के लिए कुछ कर सकने में समर्थ हों। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक युवा उनके संपर्क में आए, जिन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा सैन्य अभ्यास भी किया। इसके लिए उन्होंने हितेच्छु मंडल नाम की संस्था भी स्थापित की थी। इस संस्था में उनके साथ उनके दोनों भाई भी सक्रिय थे। यहाँ युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता और देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान भी किया जाता।

दामोदर हरी चाफेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यंत प्रभावित थे। उन दिनों तिलक जी का केसरी समाचार पत्र छपा करता था, जिसके माध्यम से दामोदर हरी चाफेकर तिलक जी के विचारों और लेखों से लगातार जुड़े रहते थे। अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनके मन में ज्वाला प्रज्वलित थी। यही कारण है कि तीनों भाइयों ने बंबई में रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत कर अपना प्रबल प्रतिरोध दर्ज किया था। तिलक जी ने एक बार कहा कि शिवाजी ने अपने समय में अत्याचार का विरोध किया था, इस समय अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में तुम क्या कर रहे हो। इस सवाल ने दामोदर हरी चाफेकर को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद अपने दोनों भाइयों के साथ उन्होंने क्रांति मार्ग अपना लिया। तिलक जी की ही तर्ज पर चाफेकर बंधुओं ने पुणे में शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का सार्वजनिक आयोजन भी शुरू किया। इस तरह दामोदर हरी चाफेकर ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया कि वो भी अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में क्रांति मार्ग अपनाएं। इसी बीच सन 1896 के अंत में पुणे में प्लेग फैला और साल भर के भीतर इसका संक्रमण इतना अधिक फैला कि इसने महामारी का रूप ले लिया। अनगिनत लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। अंग्रेज अधिकारियों ने रिपोर्ट मंगवाई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक प्लेग कमेटी बनाई गई। वॉल्टर चार्ल्स रैंड इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसने प्लेग की रोकथाम के आदेश जारी किए। रैंड और उसके साथी अधिकारियों को प्लेग नियंत्रण के नाम पर किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अधिकार का अंग्रेजों ने दुरुपयोग आरंभ कर दिया। अफसर बेधड़क लोगों के घर में घुसते, प्लेग के लक्षण ढूंढते। महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्षण की जांच कपड़े उतरवा कर की जाती। इस तरह महिलाओं के साथ शोषण और अत्याचार की नई कहानी शुरू हो गई। सैनिक घर का सामान भी लूट लेते तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करते। ये अत्यंत भयावह और विकट स्थिति थी। इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों के मन में रैंड के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। दामोदर हरी चाफेकर ने रैंड के अत्याचारों का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने बारूद और रिवॉल्वर की व्यवस्था कर ली। इसी बीच एक मंदिर के पुजारी को प्लेग हो गया और वो मंदिर छोड़कर चला गया। दामोदर हरी चाफेकर ने मंदिर में पुजारी का काम स्वीकार किया ताकि किसी को भी शक न हो। मंदिर के बगल में ही 14वीं बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का गोदाम था। वहां के सुरक्षा कर्मियों से नजर बचाकर उन्होंने दो राइफल्स की भी व्यवस्था कर ली। मन में एक ही संकल्प था, पुणे की जनता को रैंड के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना।

दामोदर हरि चाभेकर ने रैंड के वध की पूरी तैयारी कर ली थी। अब अपने साथियों को लेकर उन्होंने रैंड की पहचान तय करने का काम किया। 3 महीने तक अलग अलग स्थानों पर उसका पीछा किया गया। रैंड कब कहां आता जाता है, उसकी आदतें क्या हैं, इस तरह की सारी महत्वपूर्ण जानकारी रैंड के गाड़ीवान, पोस्टमैन और अन्य संबंधित व्यक्तियों से मित्रता करके इकट्ठा कर ली गई। इस तरह रैंड की सूचना एकत्रित कर ली गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। इसके बाद दामोदर हरि चाभेकर ने योजना को अंतिम रूप दिया। 22 जून 1897 का दिन तय हुआ, जब रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाई जाने वाली थी। नगर के काउंसिल हॉल में दोपहर को रैंड को मारना था, लेकिन रैंड वहां नहीं मिला। फिर उसे सेंट मैरी चर्च में ढूंढा गया, वहां भी सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। अब गवर्नमेंट हाउस वो ठिकाना था जहां रैंड को जाना था। चारों ओर सजावट और धूमधाम थी। सभी क्रांतिकारी पूर्व निर्धारित स्थानों पर आकर छुप गए। अब इंतजार था तो बस रैंड की वापसी का। गवर्नर हाउस में जश्न समाप्त हुआ और रैंड की बग्घी गवर्नर हाउस से लौटती हुई दिखाई दी। संकेत शब्द का इशारा मिला, गोंडिया आला रे। जैसे ही बालकृष्ण चाभेकर ने ये संकेत सुना, उन्होंने गोली चला दी। लेकिन संयोग ही था कि इस बग्घी पर लेफ्टिनेंट आर्यस्ट बैठा हुआ था। एक जैसी दो बग्घियों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन दामोदर चाभेकर अत्यंत सजग थे। वो तुरंत समझ गए कि गलती हो गई है, ये रैंड नहीं है। उन्होंने फुर्ती से महादेव विनायक रानाडे के साथ मिलकर रैंड पर हमला कर दिया। रैंड बुरी तरह घायल हो गया और 3 जुलाई 1897 को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। उन पर 20,000 के इनाम की घोषणा की गई। काफी दिनों तक बचने के बाद द्रविड़ बंधुओं की गद्दारी के कारण अंततः दामोदर हरि चाभेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची तैयार की। मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बीच गिरफ्तार होने से पहले उनके छोटे भाई वासुदेव चाभेकर ने महादेव विनायक रानाडे और खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ बंधुओं को मारकर उन्हें गद्दारी करने की सजा दी। इस तरह तीनों भाइयों पर मुकदमा चला और तीनों ही भाइयों को फांसी की सजा हुई। जब दामोदर हरि चाभेकर जेल में थे, तब तिलक जी उनसे मिलने आए और उन्हें गीता दी। अपने गुरु तिलक जी से प्राप्त ये भगवद गीता उनका संबल थी। 18 अप्रैल 1898 को यरवदा जेल में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इन अंतिम पलों में उनके हाथ में यही गीता थी। जैसे निष्काम भाव से अपना काम करके वो गीता के उपदेशों को याद करते हुए ही अनंत की यात्रा पर चल पड़े। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बिहार का शोरा और साम्राज्य की तोपें। एक ईस्ट इंडिया मैन जहाज के गोदाम में भारतीय रेशम की चमकदार परतों के नीचे एक और भी अधिक विस्फोटक माल छिपा होता था, साल्ट पीटर शोरा। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के युद्ध के मैदान लहूलुहान होते गए, युद्ध की प्रगति के लिए बारूद की मांग महाद्वीप की अपनी रासायनिक आपूर्ति से कहीं आगे निकल गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हल करने के लिए एक शानदार लॉजिस्टिक तरकीब खोज निकाली। जहाज के निचले हिस्से को स्थिर करने के लिए बेकार लोहे के पत्थरों या बजरी को भरने के बजाय उन्होंने साल्टपीटर का उपयोग युद्ध के भार के रूप में किया। इसकी आदर्श आपूर्ति पटना के पास बिहार के मैदानों से होती थी, जहां हर भारत में कहीं भी मिलने वाली शोरे की तुलना में सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला था। यह भारी था, खराब नहीं होता था और घर की लंबी यात्रा के लिए जहाज के गोदाम के तल में वजन के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त था। जहां वस्त्रों ने फैशन दिया, वहीं साल्टपीटर ने संप्रभुता प्रदान की। कंपनी ब्रिटिश सेना की प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बन गई, जो अक्सर सीधे क्राउन ब्रिटिश राज को भारी मात्रा में और चौंका देने वाले मुनाफे पर शोरा बेचती थी, जहां कीमतें अक्सर लागत से 4 गुना अधिक होती थीं। इस भारी रासायनिक स्टेबलाइजर के बिना कंपनी के जहाज सुरक्षित रूप से गहरे समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते थे और ब्रिटिश राज अपनी बंदूकों को लैस नहीं कर सकता था। ढाका की मलमल की सुंदरता के पीछे बारूद की ठंडी वास्तविकता छिपी थी, जिसने हर व्यापारिक यात्रा को साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक मिशन बना दिया था।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और ज़िंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों, जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मज़ा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बनके आपके जीवन में उतरती है। बच्चों नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है। वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
2: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
2: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते, और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे।
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
2: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
2: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
2: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
2: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
4: जी,
2: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
4: जी,
2: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
2: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज़ फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जब से हुई।
2: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं
4: जी,
2: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये ज़रूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फ़ायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नज़र आई है। दूसरी चीज़, तुम लड़के हो
4: जी,
2: यही कहा था आपसे
4: जी।
2: आप याद रखिए, लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
2: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
2: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं, तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज़ की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
2: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज़ हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
2: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
2: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
2: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहे तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
2: जी,
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, और वो घूम रहे हैं और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
2: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
2: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
2: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चे के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यू था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी, लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि ये और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
2: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है, आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए, आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मज़े करते हो, अभी हम लोग मज़े कर रहे हैं, तो नशा मज़े की चीज़ हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
2: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
2: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं, और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना। एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई, और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा, और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी, और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी, और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
2: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई, और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो, और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय, और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे। क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें। क्यों? क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
2: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
4: जी,
2: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
2: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुँच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियाँ होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से। क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
2: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
2: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
2: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई बहुत, समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
2: बैठ जाते हो,
5: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
2: कोई तो सुने, पहली बात कोई तो सुने, तो सुने।
5: बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने वही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपए मिल रहा है ना बस ये काफ़ी हैं। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपए मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं अब इसका असर उन पर
2: देख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
2: मेरा पैसा मैं
5: मेरा,
2: कुछ भी करूं।
5: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th में थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
2: हद में रहो
5: अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई, मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग 1 हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
2: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले जरूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ जरूर ले जाएगा जहां कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाजें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं, आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना, उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं, जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल
2: आ सकता है।
4: जी जी,
2: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम भारतीय सेना के इतिहास को जानते समझते हुए आ पहुंचे हैं साल 1984 तक। ये वो समय था श्रोताओं, जिसे प्रगतिशील दौर कहा जा सकता है, स्वयं हमारे देश के लिए और साथ ही हमारी भारतीय सेना के लिए भी। ये दौर था नए तौर तरीकों का, नए उपकरणों का और तकनीकों का, नई चुनौतियों का। बस पुराना और चिरकालीन था तो वो था देश के प्रति बलिदान का वो जज्बा, जिसके दम पर हर चुनौती को भारतीय सैनिक स्वीकार करता है और एक गौरव गाथा लिख जाता है। श्रोताओं, यही जज्बा आज तक भी बरकरार है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में देशभक्ति के ऐसे ही जज्बे से लबरेज एक ऐसे ऑपरेशन का हमने जिक्र किया था, जिसका नाम है सियाचिन का युद्ध, या जिसे कहें ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन यानी बर्फ का, समझिए रेगिस्तान, जहां -30 डिग्री से -50 डिग्री का चिल्ड तापमान, बर्फीले तूफानों का सिलसिला चालू होने पर कब थमेगा इसकी कोई थाह नहीं, जहां जंग दुश्मन से ज्यादा मौसम से लड़ना पड़ती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आइए जानते हैं कि बाना पोस्ट, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में किया था, उस पर कब्जे के बाद आगे क्या हुआ, कार्यक्रम की आज की कड़ी में। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सियाचिन पर भी अपनी सेवाएं देने का उनका एक लंबा अनुभव रहा है। सर, स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम में आपका।
3: जय हिंद पूर्वा जी।
2: जय हिंद सर।
3: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था
2: जी,
3: कैद पोस्ट को कैप्चर करके उसे हमने फिर बाना पोस्ट का नाम दिया था
2: जी,
3: क्योंकि उसमें जो अटैक लीड किया था, जिसे हमने जिक्र किया था, नायब सुधर बाना सिंह साहब ने किया था, जो कि बाद में ऑनरी कैप्टन बने थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये पोस्ट खोने के बाद, जो कि पाकिस्तान का उस समय का इकलौता फुटहोल्ड था सोल्टर और रिच पे, जैसे हमने बताया था, उन्होंने दोबारा अटैक किया मिला फांडला पे कब्जा करने के लिए सितंबर में, ठीक है। और इट वाज अ मेजर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट था कि किसी भी तरह से अपना सोल्टर रिज पे फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना है। तो ये अटैक जो है, इंडियन फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से इसको रिपल्स किया
2: जी।
3: और इसमें जो है, ये अटैक पाकिस्तान का बुरी तरह से फेल हुआ था, जिसमें कि उनको बहुत ही मतलब भारी असफलता देखने मिली और काफी उनका नुकसान भी हुआ था।
2: सर, ये बात 1984 की ही है?
3: नहीं, ये सितंबर 87 की हम बात कर रहे हैं, ये जब हमने बाना पोस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद की बात है
2: जी।
3: जब हमने वो कैद पोस्ट कैप्चर करके बाना पोस्ट बना दी थी
2: जी,
3: तो पाकिस्तान किसी भी तरह चाहता था, तब उन्होंने मिला फोंडला पे, जो नीचे
2: दोबारा
3: हमला किया था मिला फोंडला पे। अब ये जो हुआ, ये फेलियर हुआ, बट पाकिस्तान वाज डेस्परेट कि किसी भी तरह से हमको सोल्टर रिज पे कहीं ना कहीं जो है अपना हक जमाना है, ठीक है, जो कि जबरदस्ती वाली बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एरिया एब्सोल्युटली क्लियर था कि ये इंडियन टेरिटरी है। पाकिस्तान इसमें अपना हक जो जमा रहा था, वो एक इमेजिनरी लाइन को लेके, जैसे हमने बताया के कारण जो है जमा रहा था। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो अपनी देश की रक्षा के लिए जो है तत्पर थे और खड़े थे और बहादुरी से डटे हुए थे, ठीक है, ओके। तो 89 में, मार्च 89 में, तो एक वहां पे और चुमिक ग्लेशियर रीजन है।
2: अच्छा।
3: जैसे जो सोल्टोरो रिज जाती है उससे वेस्ट में यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो ग्लेशियर निकलते हैं तो उसमें एक चुमिक ग्लेशियर फ्लो करता है। ये एरिया भी जो है मतलब सियाचिन ग्लेशियर के पास में है लेकिन इसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है।
2: अच्छा।
3: बहुत ऊंची मतलब पहाड़ियां हैं, सीधी पहाड़ियां हैं, वर्टिकल जो हाइट्स हैं। तो किसी तरह से इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे एक अपनी पोस्ट बनाई एंड वो पोस्ट अब ऐसी थी कि उससे जो आर्टिलरी फायर है
2: जी।
3: वो हमारी जो सप्लाई रूट्स वगैरह थी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में चलती है।
2: अच्छा।
3: उसके ऊपर वो फायर करने में सफल हो रहा था। ये जो पोस्ट थी लेकिन ये ऐसी थी कि अगेन इसमें जो है वर्ड थे अभी मैंने बताया कि जो वहां तक पहुंचना एक तरह से नामुमकिन था, खड़ी चढ़ाई थी, नामुमकिन था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ये चैलेंज था कि इसको तो हम रहने नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए जो है मूवमेंट मुश्किल है,
2: जी बाधा पहुंचाएगा।
3: जी बिल्कुल। और आर्टिलरी फायर हो रहा है कंटिन्यूअसली तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोस्ट, है ना। आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होती है उससे जो है। इसमें एक जब एरियल रेकी करी गई तो पाया गया कि ये जो पोस्ट थी बहुत जो छोटी पोस्ट थी वो एक पीछे चुमिक बेस बनाया था।
2: अच्छा।
3: जहां से कि वो उसको मेंटेन कर रहे थे। तो आर्टिलरी के ऑफिसर्स ने प्लान किया कि एक उन्होंने तरीका निकाला जो है इट वाज अ वेरी इनोवेटिव है कि उसके किसी तरह से उस बेस के ऊपर आर्टिफाइस से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।
2: अच्छा।
3: तो ये पूरा प्लान हुआ। प्लान होने के बाद जो है जो आर्टी के ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स होते हैं जो फायर डायरेक्ट करते हैं।
2: अच्छा।
3: उनको उस जगह पे प्लेस किया गया जहां से कि वो लोग देख सके जैसे भी हो एंड इट वाज अ बफोस फायर जिसने कि उस बेस को डिस्ट्रॉय करा। फायर
2: यानी दुश्मन को पता भी नहीं चला कि ये कहां से हमला हुआ है,
3: कहां से हमला हुआ। एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है। ओके। और वो जब बेस बर्बाद हुआ ठीक है आर्टी फायर से एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो उस पोस्ट को मेंटेन कर सके एंड उनको वो विड्रॉ करनी पड़ेगी जो है। अच्छा। अब क्या हुआ कि जब ये हमको पता चला कि हम इतने हाई एंगल से भी पीछे जो है फायर कर सकते हैं तो इट बिकम ए न्यू ओपनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टी गन्स कि आर्टिलरी गन्स ऐसे भी मतलब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड इट बिकम ए मेजर सक्सेस ऑल्सो जिससे कि आगे चल के हमने सोल्टोरो रिज के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश नहीं करने दिया गया था। अब ये जो लोकेशन है सोल्टोरो रिज में इसको AGPL कहा जाने लगा, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन। ठीक है। ओके। अब दोनों आर्मीज जो है उन्होंने अपने डिप्लॉय हो गई थी, फियर्स फाइट चल रहा था, दोनों चाहती थी कि अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे को यह था कि हम ये हमारी देश है, हमारा जमीन है, हम इसमें पाकिस्तान को आने नहीं देंगे। पाकिस्तान चाहता था किसी भी तरह से
2: कब्जा
3: करे उसके ऊपर ताकि वो उसको फिर आगे चल के अपना बना सके, बता सके। ये धीरे धीरे जो है फायरिंग ट्रूप्स का अनाउंसमेंट ज्यादा होता चला गया।
2: अच्छा।
3: वेपन्स भी जो है उस तरह से यू कैन से अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया। आर्टिलरी की गन्स आ गई, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ही आ गई। ठीक है। तो एंड ट्रूप्स भी बढ़ने लग गए एक के बाद, मतलब धीरे धीरे धीरे जो है बढ़ते रहे क्योंकि वहां पे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया कि हम सिर्फ वहां पे दुश्मन से ही नहीं लड़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट से, क्लाइमेट से भी लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या है कि दोनों जो है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी जो है वहां पे आमने सामने ऑलमोस्ट।
2: अच्छा।
3: कई जगह पे तो खासकर बिला फोंडला वाले अगर एरिया में अगर आप देखेंगे और नीचे कई जगह पे देखेंगे तो बहुत मतलब
2: करीब
3: है
2: जी।
3: तो यहाँ पे आपको 24/7 विजिलेंस मेंटेन करके रखना होता है
2: जी।
3: अब मौसम चाहे कितना भी खराब हो, मतलब वहां पे बर्फ पड़ रही है, ब्लिजर्ड आया हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी एक सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं वहां छोड़ सकता।
2: जी।
3: क्योंकि उसको मालूम है यही मौसम है जबकि उसके ऊपर अटैक के ज्यादा चांसेस है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहां पे ड्यूटी जो कर रहा है, जो
2: 24 घंटे
3: चौकन्ना रहना है क्योंकि वहां आप फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है।
2: बिल्कुल सही।
3: क्योंकि फेलियर अगर हो गया तो आप मतलब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ओके। जान भी जाएगी और जो है जहां
2: जगह
3: भी जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये वेदर के कारण जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था वहां पे जो है। एंड वेदर के अलावा जैसे हमने बात भी करी है कि वहाँ एवलांचेस बहुत रेगुलर आते थे। हाँ जी, कभी भी मतलब जो खुलते थे। ठीक है। क्योंकि क्या होता था, स्नो ब्लिजर्ड आया तो पता चल रहा कि पूरा का पूरा स्नो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो वहां मालूम चला कि जो है क्रेवेस खुल गया है, धूप पड़ रही है तो भी हो जाता है। ऐसे इलाके में मेंटेनेंस करना, कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस, सप्लाई का मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी इलाके में अगर आप देखेंगे जो लीडरशिप है दैट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज। इस जगह पे जो लीडर्स हैं वो अपने जवानों को मोटिवेट करके रख सकें
4: जी।
3: उसके लिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है हर तरह से होता है कि क्या जवान के पास पूरा राशन पहुंचा है
4: जी।
3: क्या उसकी ड्यूटी ठीक से लगी है, क्या उसका मोराल ठीक है, क्या उसके घर से चिट्ठी आ रही है, क्या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं
4: जी।
3: है, मैंने किसको जो है अभी बाहर भेजा है, क्या वो फिजिकली उस हिसाब से फिट है। यह मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑफिसर्स के लिए, लीडर्स के लिए। एंड ये आई मस्ट से सो कि आई टेक प्राइड इन इट कि वी नेवर लेट डाउन ठीक है एनीवन इन दिस। ठीक है ऑफिसर्स जब भी हमने देखा भी है हर जगह जो है उन्होंने अपनी जो है इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ लीडरशिप। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन जो है चैलेंज रहता है जिसमें कि वो वहां पे हमें फेस करना पड़ता था। अच्छा इस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों जो आर्मीज हैं दे सफर्ड वेरी हाई कैजुअलिटी,
4: दोनों तरफ नुकसान
3: हो रहा था क्योंकि इंक्लीमेंट वेदर तो दोनों के लिए एक बार जैसा है, फायरिंग के कारण भी जो है नुकसान चल रहा था। पहले जब इनिशियली तो जब पोस्ट बनी थी तो उनमें बहुत ही मंडेन फैसिलिटीज होती थी, मतलब जो है क्योंकि जो शुरू में लोग गए थे वो तो जाते ही मतलब लड़ाई शुरू हुई थी तो उनके लिए तो सबसे प्राइमरी टास्क हो गया था कि भाई किसी तरह से अभी वाला हमें लड़ना है। ठीक है उनके लिए अपना जो कंफर्ट है दैट बिकेम सेकेंडरी, द कंट्री केम फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। ओके देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, जो है स्नो हट्स वहाँ पे खड़ी हुई जो कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, देन स्पेशल क्लोथिंग वगैरह के जो मिलना शुरू हुई, तो ऐसे करते करते जो है इम्प्रूवमेंट तो आया,
4: बदलाव का दौर आया, प्रगतिशील हम भी थे, देश भी और सेना भी।
3: सही बोला आपने
4: जी। तो बात यही आती है सर कि हम फिर ये जो सप्लाई होती है आज भी जो है वो किस तरह से सैनिकों को पहुंचाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है हम लोगों के लिए, हम आम जनों के लिए तो बड़ा ही एक रोचक सवाल है मेरे लिए तो स्पेशली कि उन तक रसद भी और जो उपकरण है जो आप जवान जो यूज करते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं।
3: देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है
4: जी
3: उसमें वहाँ कुछ नहीं उगता, वहाँ कोई नेचुरल सोर्स नहीं है
4: जी,
3: वहाँ से बर्फ है। तो जो भी वहाँ पे पोस्ट है वहाँ पे हर चीज आपको नीचे से सप्लाई करनी पड़ती है, वो राशन हो गया, केरोसिन हो गया जो है, उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, एमिनेशन है, स्पेशल क्लोथिंग है, हर चीज आपको नीचे से लेके जानी है
4: जी।
3: और नीचे से ले जाने के लिए कोई आपके पास रोड्स नहीं है वहाँ पे
4: जी।
3: किसी तरह से ट्रैक्स नहीं है ना, तो वहाँ खच्चर जाते हैं ना वहाँ पे कोई गाड़ी जाती है। तो राशन सप्लाई करने का वहाँ पे सबसे बड़ा जो साधन होता है एक तो एनएनएफ फोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयर ड्रॉप्स करते हैं।
4: अच्छा, यानी हवा से गिराया जाता
3: है, हवा से जो है पैराड्रॉप्स होते हैं तो वो राशन ड्रॉप होता है। उसके बाद एनएनएफ फोर्स और आर्मी एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो जो है सप्लाई मेंटेन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। और वहाँ पे जो राशन्स हैं मैं उसके बारे में आगे भी जिक्र करूंगा ठीक है, एक आपको अलग तरह से राशन स्पेशल राशन्स भी चाहिए होते हैं जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। एंड केरोसिन जो है जैसे एक हम बात करें वहाँ पे आप एक बार राशन खाए मतलब खाना खाए वगैरह रह सकते हैं लेकिन केरोसिन के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि अगर वहाँ पे आपको आग नहीं जली हुई है, आपके बुखार ही नहीं चली है तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि आप के लिए मुश्किल हो जाता है। सो लॉजिस्टिक इज अ नाइटमेयर देयर और इसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस और बहुत डिटेल प्लानिंग करनी होती है।
4: अच्छा,
3: कि एक यूनिट जा रही है तो उसके लिए वहाँ पे उसको कितना राशन चाहिए होगा, उस दौरान मतलब कितने दिन जो है वेदर पैक रहेगा ये भी एक हिसाब लगाया जाता है कि विंटर्स में ज्यादा पैक रहता है तो उसमें हमें कितने दिन मिलेंगे वहाँ पे राशन डंप करने के लिए, हर पोस्ट पे पहुँचाने के लिए मतलब जो है हमें कितने पोर्टर्स चाहिए हैं, किस तरह से मतलब जो है लेके जा पाएंगे। एंड इट्स अ मेजर एफर्ट्स जो मतलब अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल पोस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं और दिन रात जो है इसके लिए एक एक मतलब जो है कार्रवाई चलती रहती है। और इसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि IAF प्लेज अ वेरी वेरी important major role. And Haptus of Amiation, they also play major role in this.
4: सर, अब एक प्रश्न यहाँ पर मन में यही आता है कि ऊंचाई तो सियाचिन में भी है और दूसरी जगहों पर भी उतनी ही ऊंचाई है, तो सियाचिन की ऊंचाई में, दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई में आप क्या अंतर पाते हैं, अपने काम में क्या अंतर पाते हैं वहाँ पर?
3: सियाचिन थर्ड पोल जिसको बोलते हैं ना
4: जी,
3: नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद जो है थर्ड पोल बोला जाता है उसको। जब आप वहाँ जाते हैं, देखिए बाकी जगह पे एक फर्क ये होता है कि आप कहीं जाते हैं जैसे बाकी लोकेशंस पे मैंने देखा कि आपको थोड़ा इनहैबिटेशन दिखता है, लोग दिखते हैं आसपास, जो है जानवर दिखते हैं, जो है कहीं कहीं घास वगैरह भी दिखती है, कहीं एक वक्त तक तो आपको ट्री लाइन दिखती है। जब आप सियाचिन के एरिया में एंटर करते हैं इस एरिया में, वहां आपको सिवाय बर्फ के कुछ नहीं दिखता है। जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक नॉर्मल जो वातावरण को देखता है, जो नॉर्मल चीजों को मतलब एक्सेप्टेड होता है कि हमें पेड़ दिखेंगे, हमें चिड़िया दिखेगी, हमें एक आवाज दिखेगी, हमें कुत्ता भौंकता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ रहता है। देयर इज अ एब्सोल्यूट साइलेंस, वहां कुछ नहीं, वहां आपको बर्फ दिख रही होती है चारों तरफ। और उसमें जो है वहां पे जो ब्लिजर्ड्स आते हैं, मतलब स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली इट इज फॉर 15 डेज आल्सो, मतलब जो है पैक रहता है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं गया था, जो मैं स्नो हट थी उसमें मैं सीधा एंटर किया था, एंड 20 दिन के बाद वो है 16 से 18 फीट नीचे बर्फ जा चुकी थी जो है। तो आप मतलब ये देखिए, एंड ऐसे वहां पे जिस तरह से मतलब पियर्स, मतलब इतने ज्यादा तेज तूफान मैंने कहीं और नहीं देखे थे। तो इसका क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। एंड सेकंड थिंग इज वहां पे रेरिफाइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो बॉडी फंक्शनिंग जो है उसपे बहुत पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली इट्स एप्स यू।
4: आप शारीरिक रूप से तो इसको चैलेंज की तरह लेते ही हो, मानसिक रूप से भी।
3: हाँ, मानसिक रूप से भी। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम जस्ट माउंटेनियरिंग से अगर कंपेयर भी करें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि माउंटेनियरिंग कम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वो भी, लेकिन माउंटेनियरिंग में आप एक जाते हैं, उस पहली बात तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप वहां रह रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक टास्क है, और उसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महीने रह रहे हैं। 3 months is considered as the maximum a body can, मतलब sustain.
4: अधिकतम वो कितने समय तक वहाँ रह सकता है?
3: हम लोग का ना जैसे ग्रुप जाता है तो हम 3 महीने के लिए जाते हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: जी 3 महीने के लिए जाते हैं, 3 महीने के बाद जो है वापस आते हैं। उसके बाद बॉडी के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जाने से पहले भी अब जैसे इस इलाके में जो है आपको स्पेशली एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है, एंड आपके लिए उसके लिए आपका जो है मेडिकल रोज होते हैं, फिर आपको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर सियाचिन बैटल स्कूल है जिसमें कि हमें बर्फ के ऊपर चलना, क्रेवेसेस क्रॉस करना, ठीक है, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, आइस वॉल जो होती है 90 डिग्री की आइस वॉल होती है उसको कैसे चढ़ना है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं जिसमें कीले लगी होती है पैरों में, वो डाल के चलना होता है। फिर जो हमारे पास हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो सेट्स हैं, ठीक है, बाकी चीजें हैं, तो वो कैसे उसको मेंटेन करना है, टेलीफोन सेट, क्योंकि जब इस टेम्परेचर पे उसमें भी जो है मतलब काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी उनके भी मतलब जो है एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी एक स्पेशल केयर आपको करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है सियाचिन को अलग थोड़ा बनाती हैं, ठीक है।
4: वहां पर जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है?
3: बिल्कुल है। एक मतलब बहुत छोटी सी चीज होती है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको जो है प्रॉपर रखना है। अच्छा, सियाचिन में क्या था, यू एंटर इनसाइड देन यू आर कमिंग बैक ओनली आफ्टर मतलब 3 months 4 months जो है आप वापस आ रहे हैं। तो एक जो मेंटली भी जो होता है लोगों के ऊपर एक मेंटल इम्पैक्ट आता है, आइसोलेशन का इम्पैक्ट आता है, तो उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कैसे बिजी रखते हैं। देन जो वहाँ के डिजीजेस वगैरह रहती हैं, जैसे चिल ब्लाइंड हो गया, फ्रॉस्टबाइट्स हो गई हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, अब जैसे आपने स्नो गॉगल पहना हुआ है, आपने सपोज उसको निकाल दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इमीडिएटली जो है आपको स्नो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। तो वो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं उसके, उस इलाके में मेंटली आपको कैसे फिट रहना है, आइसोलेशन से कैसे डील करना है, ठीक है। एक छोटे से टेंट में जो है 10 लोग रह रहे हैं, अगर सब कुछ मतलब कई बार जो है मतलब इट्स अ चैलेंज
4: जी।
3: तो ये चीजें जो होती हैं ये मुझे लगता है बाकी से थोड़ा इनको
4: अलग है,
3: अलग है
4: जी।
3: एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस आई हैड फाउंड देयर
4: जी।
3: बट मैं एक बात बताना चाहूंगा
4: जी,
3: मैंने कभी अपने किसी जवान को उदास नहीं देखा था, कभी मैंने किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं देखा
4: जी। सर ये तो जवानों का जज्बा है जो उन्हें वहां पर हमेशा मुस्तैद रखता है, लेकिन एक बात तो ये सोचने में आती है सर कि इनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारी क्या करते हैं या क्या प्रोविजंस होते हैं कि ये हमेशा अपना मोराल जो है उनका बना रहे।
3: लीडरशिप तो है ही
4: जी,
3: इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है इसमें। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान रखती है, आर्म फोर्सेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो जवान जाते हैं उनको स्पेशल राशन ऑथराइज होते हैं
4: जी।
3: स्पेशल राशन में जो है अगर आप वो देखेंगे, राशन देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, हर तरह के जूसेस होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, रसगुल्ले के टिन्स जो हल्दीराम के आते हैं, गुलाब जामुन टिन्स हैं, नमकीन हैं, ठीक है, देन स्पेशली डेवलप्ड रेडी टू ईट मील्स जो होते हैं वो होते हैं, एंड मतलब वेरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, चिकन है, ऐसे करके काफी जो जिस तरह से ट्रिप जा रहे होते हैं उस तरह से उनको राशन दिया जाता है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि जो वेजिटेरियन ट्रिप्स हैं उनके लिए वेजिटेरियन काइंड ऑफ राशन दिया जाए, जो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन राशन दिया जाए, तो स्पेशल राशन ऑथराइज होता है वहाँ पे जो है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है जिसके बगैर वहाँ पे मतलब रहना बहुत मुश्किल है, तो वो इश्यू होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मानते हैं, तो उसको बहुत डेवलप किया गया है, एंड बहुत ही बेसिक से लेके आज बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक जवान जो है अपने घर में बात कर पा रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि जो अपने घर में वो बात कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी प्राइम एंड वेरी गुड देयर, इन द सेंस डॉक्टर्स बहुत होते हैं हर मतलब जो है कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो है आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड हर जवान का ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पोस्ट पे भी जो होते हैं कि उनको किसी को बुखार तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अभी अकोमोडेशन जो है लाइक स्नो हट्स जो है बनाई जाती हैं वहाँ पे, एंड आर्किटेक्ट टेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं रहने के लिए। ऑफकोर्स इन सबके बावजूद मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वहाँ लाइट नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपके पास अब मनोरंजन का साधन रेडियो ही है, तो मतलब है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत

0: एट ग्लेशियर, ठीक है। इवन मैं बता रहा हूँ, एक मोमेंट होता है ना जब जैसे चलना भी होता है ना वहाँ पे, अगर फ्रेश स्नो फॉल हुआ तो आप ये देखिए कि आप एक कदम करते हैं और नीचे पूरा आप कमर तक अंदर जा चुके होते हैं। कई कई बार जो है मतलब 100-100 मीटर क्रॉस करने में एक घंटे से ऊपर लग जाता है, एंड आपको नहीं मालूम है कहाँ पे क्रवास खुलने वाला है, कहाँ एवलांच आने वाला है। स्नो ब्लेजर्स में जब आप बाहर निकलते हैं स्नो ब्लेजर्स के बाद, तो मैंने पूरा टेरेन चेंज होता हुआ देखा है, जहाँ पे मतलब टीले थे बर्फ के वहाँ वो पूरे गायब हो गए, एंड वहाँ पता चलता है कि नया क्रवास खुल गया है।
1: तो सीन भी चेंज हो जाता है,
0: सीन चेंज हो जाता है, पूरे कम्युनिकेशन वायर जो है आपके जो है सारे के सारे स्नैप हो जाते हैं, उसको आप इमीडिएटली फिर एस्टेब्लिश करते हो। इट्स अ हरकुलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म करना उस सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन में, आर्कटिक कंडीशन में, इट्स अ मेजर चैलेंज विच दे डू इट वेरी सिंसियरली, है ना। देन बॉडी एफिशिएंसी जो है बहुत कम हो जाती है, आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। सी अब बॉडी, नॉर्मल बॉडी वहाँ पे जो है जैसे अगर जिसको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए उसको वहां पे 4000 कैलोरी चाहिए। हाँ। अब इतना कंज्यूम करना भी हमारी हैबिट में नहीं होता।
1: नहीं,
0: मैं आपको बोलूं कि आप 15 रोटी खा लीजिए आज, तो नहीं खा सकते,
1: नहीं खा सकते,
0: नहीं खा पाते। तो ये इस कारण से क्या होता है, बॉडी एफिशिएंसी कम होती है। देन वर्किंग जो है आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट, बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट है, बहुत कंजेस्टेड पोस्ट है, तो उसमें जब आपको रखा जाता है तो भी इतने लंबे टाइम के लिए 90 दिन बहुत होते हैं वहाँ पे, आपको समझ में आता है। तो
1: सियाचिन में जो पोस्टिंग होती है उसके लिए क्या कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, किस तरह से जवान सिलेक्ट होते हैं या उनको किस तरह से वहाँ के लिए किस तरह से चुना जाता है?
0: देखिए इन्फेंट्री बटालियंस का तो रूटीन होता है, मतलब टेन्योर होता है।
1: अच्छा।
0: जब बटालियंस जा रही होती हैं तो जिस रेजिमेंट की वो बटालियन होती है, जैसे सपोज मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, तो मेरी अगर हमारे एक बटालियन जा रही है तो उसमें वॉलंटियर करके जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जो है उसी तरह से बाकी भी जो है इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स हो गए हैं, आर्टिलरीज हो गए, तो उनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स आती हैं।
1: अच्छा।
0: एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉलेंटियर ऑल्सो,
1: आप भी चुन सकते हैं,
0: आप चुन सकते हैं जाने के लिए, ठीक है। एंड बहुत लोग हैं जो वॉलेंटियर करके जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इतने कष्ट के बावजूद जो है उस चैलेंज को उठाना का एक और रहता है, हौसला रहता है।
1: भारतीय सैनिकों की पहचान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मस्ट से कि दिस प्लेस इट एक्चुअली मतलब गिव्स यू अ मेजर चैलेंज इन योर सर्विस, ठीक है। मोर देन 1000 soldiers had lost their lives in glacier, ठीक है। This one of the highest casualty rates अभी तक जो है, इतने मतलब officer JCO जवान शहीद हुए हैं इस धरती पे जो है सियाचिन में। और इसी कारण जो है बहुत सारे जो मतलब सोल्जर्स हैं, हमने जैसे बाना सिंह साहब का जिक्र किया था, परमवीर चक्रा जिनको मिला है, और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर्स हैं जेसीओ सुवास हैं जिनको गैलेंट्री एक्शन के लिए जो सम्मानित किया गया है, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो शहीद हुए हैं और शहीद होने के बाद उनको जो है सम्मान मिला है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ का सियाचिन जैसी जगह का, इट शोकेसेस द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, सिंसियरिटी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। एंड यहाँ लड़के हमने पूरी दुनिया को जिता दिया था कि इस लोकेशन पे, इस हाइट में, इस एडवर्स कंडीशन में भी जो देश है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: देश सर्वोपरि है।
0: देश सर्वोपरि। फॉर अ सोल्जर द कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवर।
1: तो श्रोताओ, ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए इस बात का सबूत है कि जब बात इस देश की मिट्टी की आती है तो हमारी सेना का हर सैनिक कुदरत के सबसे भयानक रूप से भी टकराने का दम रखता है। ये जीत हथियारों की नहीं, हमारे जवानों के फौलादी हौसलों की है, जिसे दुनिया की कोई भी ठंड जमा नहीं सकती। इसके साथ ही सर, आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने आज स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
0: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
0: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आँखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
0: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
0: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
0: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
0: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
0: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
0: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है,
2: इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: वाओ, तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
2: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
2: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयां क्यों हैं?
2: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयां अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, आखिर BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
2: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
2: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या है दादू, आप बिना आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
2: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
2: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
2: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
2: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
2: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
2: वो रेडियो तरंगें भेजता है, ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है, लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
2: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
2: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
2: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
2: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
2: नहीं नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे?
2: जैसे यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
2: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
2: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं।
2: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
2: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
1: और आगे?
2: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
1: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
2: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
2: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
2: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
2: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
2: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
2: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है।
2: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
2: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
2: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
2: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
2: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
2: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
2: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
2: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
2: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
2: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
2: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
2: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
2: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है।
2: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
2: हाँ हाँ, इसे संयुक्त तो उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
2: देखो बेटा, BEL ने GE हेल्थ केयर के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का कार्य किया।
1: मतलब रक्षा क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान।
2: हाँ, वही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
1: उसमें BEL का क्या योगदान था?
2: उसमें बेटा BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
1: अच्छा, क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
2: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
2: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
2: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
2: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
2: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
2: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
2: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
2: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
2: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
2: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
2: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
2: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
3: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
4: नमस्कार
3: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
2: दीपक नेमा,
3: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गुआताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को

0: से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ऋषि देवेंद्र कुमार ठाकुर इस समाज के सर्व प्रमुख कार्यकर्ता हैं। और कुछ?
1: अरे तो ये भी बता दो कि वे ब्रह्म समाज के सौदास कैसे बने। क्यों भाई सोमेंद्र, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे? इन्हें तो ये भी पता होगा।
0: अरे हाँ हाँ, मुझे पता है। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था इसके बारे में। हुआ यह है कि पिछले दिनों राम नारायण वसु की बहुचर्चित पुस्तक ब्रह्मवाद क्या है उसके हाथ लग गई। इस पुस्तक ने उसे बहुत प्रभावित किया। मुझसे मिला तो बोला,
2: क्या तुमने ये पुस्तक ब्रह्मवाद क्या है पढ़ी है?
0: नहीं तो?
2: जरूर पढ़ना, अद्भुत पुस्तक है। ब्रह्मवाद को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है कि कहीं शंका शेष ही नहीं रहती। मैंने तो निर्णय कर लिया है, मैं ब्रह्म समाज का सदस्य बनने जा रहा हूं।
0: बस, और वह 19 वर्ष की इस उम्र में ही ब्रह्म समाज का सक्रिय सदस्य बन गया और पूरे जोर शोर के साथ समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में जुट गया।
3: लो भैया, तुम्हारी चाय आ गई।
4: लाओ लाओ लाओ गजवी काका। अच्छा, आगे क्या हुआ गजवी काका?
3: वो कहते हैं ना बेटा, कर्मठ और योग्य आदमी की सभी जगह पूछ होती है।
4: हाँ, ये बात तो है।
3: सो शीघ्र ही लोग केशव चंद से प्रभावित हो उठे और वे ब्रह्म समाज के एक प्रमुख कार्यकर्ता माने जाने लगे। इतना ही नहीं, 2 वर्ष बाद ही सन 1859 में उन्हें वयोवृद्ध महर्षि देवेंद्र कुमार के साथ समाज का संयुक्त मंत्री चुन लिया गया।
4: अच्छा,
3: 21 वर्ष के युवक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
4: सचमुच गजबी काका, ये तो बहुत बड़ी विलक्षण बात थी।
3: संयुक्त सचिव बनते ही वे महर्षि के साथ चीन गए और वहां समाज का प्रचार किया, कई पुस्तकें लिखी।
4: अच्छा,
3: इनमें से युवा बंगाल ये तुम्हारे लिए है पुस्तक ने तो जैसे लोगों पर जादू जैसा असर कर दिया। समाज के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पर तभी एक घटना घटी। नियति जैसे उनसे एक महान कार्य कराना चाहती थी। हुआ ये कि ब्रह्म समाज के मंत्री ईश्वरचंद विद्यासागर का स्वास्थ्य बिगड़ा।
4: अच्छा।
3: तो उन्होंने समाज से अलग होने का निर्णय किया और अपनी जगह केशव चंद्र को मंत्री बनाने की घोषणा कर दी।
5: केशव बुढ़ापे के कारण अस्वस्थता ने मुझे निष्क्रिय बना दिया है। मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा कर्मठ कार्यकर्ता समाज का मंत्री बने। मैं समाज से अलग तो हो रहा हूं, पर अभी भी मेरा एक काम अधूरा रह गया है केशव, जिसका दायित्व मैं तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूं।
2: जी, कौन सा दायित्व महर्षि?
5: केशव, विधवाओं की बुरी हालत मुझे अत्यंत परेशान किए हुए है। तुम्हें मैं उनकी हालत सुधारने के लिए उनके फिर से विवाह का माहौल तैयार करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं।
2: जी महर्षि, इस विषय ने मुझे भी व्यथित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी शक्ति आपके द्वारा दिए दायित्व को निभाने में लगा दूंगा। ईश्वर अवश्य हमें इस सत्कार्य को सफल बनाने में सहायता करेगा।
5: केशव, मुझे पूर्ण भरोसा
2: जी,
5: तुम अपने अभियान में जरूर सफल होगे।
2: जी विद्यासागर जी,
5: ईश्वर तुम्हें सफलता दिलाएगा।
2: जी जी, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जी
5: हाँ केशव, तुम्हें ये कार्य करना ही है।
2: जी जी,
5: नहीं तो विधवाओं की हाय इस भारत भूमि को कभी पनपने नहीं देगी केशव।
2: जी विद्यासागर जी, आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
6: फिर क्या हुआ काका?
3: केशव चंद सेन ने भी ये दायित्व एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
4: अच्छा।
3: वे विधवा विवाह के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करने लगे। जगह जगह भाषण, विधवा विवाह के समर्थन में नाटक खेले जाने लगे। लोगों में इसका अच्छा असर दिखाई देने लगा। लोग हिम्मत करके विधवाओं के फिर से विवाह के लिए आगे आने लगे।
4: अच्छा।
3: विधवा विवाह के प्रकरणों में बढ़ोतरी होने लगी और इसके साथ ही रूढ़िवादियों द्वारा केशव चंद्र का विरोध भी तेज से तेज होता चला गया।
1: विधवा विवाह धर्म विरुद्ध है, यह एक बड़ा पाप है, ये पाप हम नहीं चलने देंगे।
7: केशव चंद्र पागल हो गए हैं, उन्होंने समाज को रसातल में पहुंचाने का प्रण ले रखा है।
1: हाँ।
7: उनका पागलपन हम नहीं चलने देंगे,
1: बिल्कुल नहीं चलने।
7: केशव चंद्र का विरोध बहिष्कार किया जाएगा।
8: केशव चंद्र आ रहे हैं, केशव चंद्र आ रहे हैं, वे आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कृपया शांत हो जाए।
9: हम उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते,
1: अनैतिकता का प्रसार नहीं होने देंगे, हम विरोधी कार्य नहीं होने देंगे,
10: नहीं होने देंगे। विधवा विवाह
11: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
10: विधवा विवाह
11: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
10: विधवा विवाह
11: मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
12: धर्म विरोधी कार्य बंद हो,
11: बंद हो, बंद हो।
13: केशव चंद्र
11: मुर्दाबाद,
13: केशव चंद्र
11: मुर्दाबाद।
8: भाइयों भाइयों, केशव जी की बात भी सुने।
11: केशव चंद
13: मुर्दाबाद,
11: अधम प्रचारक, अधम प्रचारक।
13: अरे
11: भाई, तो कहता हूँ इसका मुंह काला करो।
4: फिर क्या हुआ गजबी काका?
3: केशव चंद्र का संकल्प दृढ़ था, तीव्र विरोध के बावजूद वे और उनके समर्थक विधवा विवाह के अभियान में जुटे रहे। विधवा विवाह के साथ ही उन्होंने महसूस किया कि स्त्रियों की बुरी हालत के लिए बाल विवाह भी कम जिम्मेदार नहीं है।
14: मित्रों, ब्रह्म समाज की ये विशेष मीटिंग एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में विशेषकर गांवों में दो दो तीन तीन वर्ष की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने का मौका ही नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप बहुतेरी बच्चियां 8-9 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते विधवा हो जाती हैं। फिर उन्हें जीवन भर तपस्विनी की तरह रहना पड़ता है, उन्हें भारी प्रताड़ना सहनी पड़ती है।
15: मंत्री महोदय सही कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, कुछ वर्ष पहले तक तो उन्हें जिंदा भी नहीं रहने दिया जाता था, जबरदस्ती अपने मृत पति के साथ जला दिया जाता था। अब भी कई बार सती प्रथा की छुटपुट घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं।
14: इसीलिए मित्रों, इसीलिए समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम विधवा विवाह का प्रचार करने के साथ साथ बाल विवाह का विरोध करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये शपथ लेगा कि वो कम उम्र की अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेगा और अपने समाज में होने वाले बाल विवाह का पूरी ताकत से विरोध करेगा।
1: मित्रों, इस हर्ष ध्वनि से स्पष्ट है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति बाल विवाह के विरोध में हैं, पर मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले ही विधवा विवाह को समर्थन देने के अभियान के कारण ब्रह्म समाज की कटु आलोचना हो रही है। ऐसे में बाल विवाह विरोध का नया मुद्दा उठाकर क्या हम अपनी आलोचना, अपने विरोध को और हवा नहीं देंगे?
14: बिल्कुल ठीक, आपका डर निरर्थक नहीं है, पर हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया काम किया जाता है, समाज में सुधार का प्रयत्न किया जाता है, यथास्थिति वादियों द्वारा उसका विरोध होता ही है। धर्म, नैतिकता आदि सभी मुद्दों का उपयोग किया जाता है, पर हमें इससे भयभीत नहीं होना है। मित्रों, आप याद करें, सती प्रथा का जब विरोध शुरू हुआ था तब ऐसा ही हंगामा मचा था। लोगों ने इस अभियान को समाप्त करने के सभी प्रयत्न किए थे, पर हमारे नेताओं ने, हमारे समाज चिंतकों ने अपने विरोध की चिंता न करते हुए अपने प्रयत्न जारी रखे। उसी साहस और प्रण का फल है कि आज सती प्रथा की कुप्रथा का अंत हो गया है, बल्कि इसकी रोक का कानून भी बन रहा है। आज भी यही हो रहा है। यदि हम मानते हैं कि बाल विवाह गलत है, यदि हम ये महसूस करते हैं कि विधवा विवाह सही है तो हमें अपने विरोधियों की परवाह न करते हुए अपने समाज सुधारक इन अभियानों से दृढ़ता के साथ जुड़ते रहना है।
3: केशव चंद्र अपने समाज सुधार के अभियान में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहे। उनका विरोध भी होता रहा, पर केशव चंद्र अडिग रहे। उन्हें लगा इस विरोध का कारण है अशिक्षा, इसलिए भारतवासी उचित अनुचित का बिना विचार किए अंधों की तरह पुरानी लीक पर चलना पसंद करते हैं। इसे दूर करने के लिए उन्होंने एक और अभियान छेड़ा, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित करने का।
4: फिर क्या हुआ? क्या उनके इस कदम का विरोध नहीं हुआ?
3: विरोध की उन्होंने कब परवाह की?
4: हाँ, ये बात भी है।
3: उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह भारतवासियों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रिटिश राज्य के नाम एक अपील नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की, भाषण दिए और इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी अखबार भी निकाला। इस सब का असर ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। स्कूल खोले जाने लगे और विरोध जैसे उनकी नियति बन गई थी।
4: इसके बाद क्या हुआ गजबी काका?
3: इसके बाद केशव चंद्र ने अपने विरोधियों को अपने विरोध का एक और मुद्दा दे दिया।
4: क्या
3: बात? सन 1863 की ही है। इस बार की ब्रह्म समाज की मीटिंग में केशव चंद्र ने एक नया मिशन उछाला।
14: मित्रों, आप लोगों ने यह महसूस किया होगा, हमारे समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय है, उन्हें अत्यंत तुच्छ समझा जाता है। हमारे घरों में भी केवल पुरुषों की ही चलती है, स्त्रियों को तनिक भी नहीं पूछा जाता है। इनकी ये स्थिति बनाए रखने के लिए इनकी पढ़ाई लिखाई में भी बंदिश लगाई हुई है। सही तो यह है कि उन्हें पुरुषों के पैर की जूती समझा जाता है, पैर की जूती। हमें उनके उत्थान की ओर ध्यान देना होगा।
9: मंत्री महोदय शायद ये भूल गए हैं कि ऐसा कहकर वे हमारे पारिवारिक जीवन में सेंध लगा रहे हैं।
14: नहीं नहीं नहीं, पारिवारिक जीवन में सेंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने की बात की जा रही है। अरे जरा सोचिए, सोचिए जरा, आज समाज की गाड़ी का एक पहिया बेकार पड़ा है, समाज एक पहिए की गाड़ी बना हुआ है। क्या आप नहीं चाहते दूसरा पहिया भी सही हो, उसकी मरम्मत करके कारगर बनाया जाए उसे?
9: अरे ये हमारे घर का मामला है, इसमें हस्तक्षेप का अधिकार आपको किसने दिया? हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे।
15: मित्रों सुनो मेरी बात। मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना प्रस्ताव को शुरू में ही नकार देना ठीक नहीं है। मेरी समझ से मंत्री महोदय ने समाज की बेहतरी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
16: हाँ हाँ, मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाना ही चाहिए।
17: ठीक है ठीक है,
14: शांत हो जाइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर है, दोनों के सही विकास से ही समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। पति पत्नी के बीच छोटे बड़े का सवाल उठाना गलत है। अरे जरा सोचें, यदि माँ दबी कुचली हालत में रहेगी तो क्या बच्चे का कभी सही ढंग से विकास हो सकेगा? इसलिए मेरे विचार से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए अधिक से अधिक कन्या विद्यालय खोलने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़कियों को शिक्षित बनाने और एक स्त्रियों की पत्रिका वामा बोधनी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
1: जाहिर है मंत्री महोदय स्त्री उद्धार, स्त्री उत्थान की बात करके घर घर में महाभारत प्रारंभ कराना चाहते हैं। हम इसमें सहभागी नहीं बनेंगे।
9: मेरा कहना है समाज अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हम लगातार अपनी सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार करते जा रहे हैं। पहले विधवा विवाह का मुद्दा, फिर बालिका विवाह का मुद्दा, और अब स्त्री उत्थान का मुद्दा।
2: एक मिनट, मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, ये सभी मुद्दे सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार न होकर हमारे अंधविश्वासों, हमारी कुप्रथाओं पर प्रहार रहे हैं। संभवतः हमारे मित्र समाज में पुरुषों के वर्चस्व के लिए स्त्री उत्थान से भविष्य में खतरे की संभावना से चिंतित हो उठे हैं ना?
16: मंत्री महोदय, आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, हम इसे सहन नहीं करेंगे।
1: मैं सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि क्या समाज केवल एक व्यक्ति की सनक से संचालित होगा?

0: गए सुधार के सभी अभियान समाप्त हो गए?
1: नहीं, हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: ब्रह्म समाज से अलग होकर 1867 में उन्होंने एक नई संस्था शुरू की, भारतीय ब्रह्म समाज। अगले वर्ष 24 जनवरी 1868 को उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज मंदिर की आधारशिला रखते हुए कहा,
2: मित्रों, ईश्वर ना केवल हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का और ना ईसाइयों का, वो तो सबका है, सबका है और सब उसके हैं। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, सब उसके हैं। इसीलिए सब बराबर हैं। जो कोई उसे पाना चाहेगा जरूर पाएगा, पर दूसरों को नीचा गिराकर

0: इन जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रोफेसर मैक्स मुलर, ग्रांट डफ आदि सब उनके प्रशंसक बन गए।
1: अच्छा।
0: इंग्लैंड से लौटते ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था बनाई। सभी जातियों और धर्मों के लोग इसके सदस्य बने। इसके अंतर्गत अनेक काम हुए। सुलभ समाचार, मदन गरल नामक पत्र निकाले गए। स्त्रियों के लिए नॉर्मल स्कूल, धर्मार्थ शाखा की स्थापना, एक औद्योगिक स्कूल और गरीबों के लिए एक प्रारंभिक स्कूल और कलकत्ता स्कूल प्रारंभ किए गए। इतना ही नहीं, जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने भारत आश्रम की स्थापना की।
1: अरे वाह।
0: 8 जनवरी 1883 को वो कर्मयोगी, समाज सुधारक 46 वर्ष की अल्प आयु में संसार से विदा हो गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगा।

वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं, तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की प्राचीन कोहबर चित्र परंपरा पर केंद्रित 3 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। सृजन कार्यक्रम के तहत कला प्रेमियों को 3 दिनों तक जनजाति परंपरा और रंग देखने मिले। इन दिनों में अवध, ब्रिज और थारू संस्कृति रंगों के माध्यम से भोपाल में नजर आई। दिन दिन तक बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंची थी। उन्हें यहां थारू संस्कृति से जुड़े हाथी, मछली और धान के प्रतीक देखने को मिले। यहां 3 दिन के में 50 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं।

आज के समय में संसाधन और सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन भीतर की शांति, आनंद और आत्मीयता कहीं ना कहीं कम होते दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को खुद के भीतर प्रेरित करने के लिए बिरला मंदिर में बुधवार को अंतर आह्वान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को संगीत के साथ मंत्रों की साधना कराई गई और भीतरी आनंद के लिए प्रेरित किया गया। इसमें राजस्थान के बीकानेर से आए युवा साधक संगीतकार कृष्णा शक्ति ने कार्यक्रम में लाइव संगीत, बांसुरी वादन, मंत्रोच्चार, स्त्रोत भजन, निर्देशित ध्यान, सामूहिक प्रार्थना, प्रेरणादायक प्रसंग, कविता के माध्यम से आत्मचिंतन कराया। मंदिर आने वाले अनेक श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया।

भारतीय संगीत सीखने के लिए विदेशी कलाकार भोपाल से जुड़ेंगे। राजधानी के ध्रुपद संस्थान गुरुकुल में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार हुआ है। ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राजधानी को नई पहचान देगा। यहाँ संगीत पर अनुसंधान किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन छात्र से जुड़ सकेंगे। वर्तमान में संस्थान में चल रहे वीणा वाणी संगीत शिविर में देश के कोने कोने के साथ साथ विदेशी छात्र भी बड़ी संख्या में भोपाल आए हैं। ये छात्र वीणा साधिका ज्योति हेगड़े से रुद्रवीणा और पंडित उमाकांत गुंदीचा से ध्रुपद गायन सीख रहे हैं।

पुस्तक प्रेमियों के लिए शहर में बुक फेस्ट का आयोजन कर रहा है। 20 दिवसीय ये फेस्ट 9 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक डीवी सिटी मॉल में आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह कि फेस्ट में प्रदर्शित सभी पुस्तकें ओरिजिनल हैं और सीधे प्रकाशन संस्थानों से स्टार स्टोर तक पहुंचाई गई हैं। बुक फेस्ट में पाठकों के लिए विभिन्न जॉनर की पुस्तकों का बड़ा संग्रह उपलब्ध है। इनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, उपन्यास, बायोग्राफी, बिजनेस कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स, इतिहास, राजनीति और सेल्फ हेल्प जैसी पुस्तकें शामिल हैं।

लघु कथा दिवस के अवसर पर लघु कथा शोध केंद्र समिति भोपाल द्वारा हिंदी भवन में अखिल भारतीय लघु कथा अधिवेशन एवं शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के साहित्यकारों, शोधकर्ताओं, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शहर के वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार बरुआ को प्रतिष्ठित संवाद भारती सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। राजकुमार बरुआ पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हैं। उनके विचार परक ज्ञानवर्धक लेख देश के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं।

संविधान हत्या दिवस के अवसर पर यंग थिंकर्स फोरम की ओर से गुरुवार शाम 5 बजे आपातकाल की संघर्ष गाथा विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र शिवाजी नगर में होगा। आयोजन के मुख्य वक्ता न्यायाधीश अशोक पांडे रहेंगे। वे आपातकाल के ऐतिहासिक संवैधानिक और न्यायिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।

नवप्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा आगामी 12 जुलाई को रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागृह में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक शहर के मौजूद रहेंगे सबनानी भगवान दास सबनानी। इस समारोह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की टॉपर चांदनी विश्वकर्मा और 10वीं की टॉपर मुस्कान कुशवाहा सहित क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों, खेल कला एवं साहित्य जगत की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों के साथ अभिभावक और शिक्षक भी शामिल होंगे।

0: विस्मयजनक लगता है कि स्वामी विवेकानंद एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाएं आरंभ की थी, उनमें से कई अपनी शताब्दी मनाने के बाद आज भी अबाध गति से चल रही हैं।
1: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है, किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। किंतु उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का पत्रकारिता का पक्ष प्रायः अज्ञात ही है। कई लोगों को शायद स्वामी जी को एक पत्रकार के रूप में चिन्हित करना हास्यास्पद भी लगे, परंतु ये एक सच्चाई है कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही कम से कम 6 पत्रिकाएं आरंभ की थी तथा कई अन्य पत्रिकाओं के भी प्रकाशन में सहायता एवं प्रेरणा प्रदान की थी।
0: तरुणावस्था से ही स्वामी जी की पत्रकारिता में रुचि थी। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में उन्होंने श्री राम कृष्ण के गृही शिष्य उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय को एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमेरिका जाने के बाद उनमें पत्रिकाओं के प्रवर्तन का विचार और भी प्रबल हुआ था। अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि के बाद पूरे भारत वर्ष में जो उत्साह की विशाल तरंग उठी थी, स्वामी जी उसका उपयोग श्री राम कृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के प्रचार में करना चाहते थे, बिना किसी समझौते के सत्य का प्रचार, उनके अपने बारे में कुछ संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार का विरोध, अपने आदर्शों के प्रचार तथा अन्य कई कारणों से उनका मन इस ओर विशेष उन्मुख हुआ था।
1: उन दिनों स्वामी जी का मन पत्र पत्रिकाएं निकालने के विचारों से कितना ओतप्रोत था, इसका कुछ अनुमान उनके पत्रों से हो जाता है। वे केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बंगला, हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं में भी पत्रिकाएं निकालना चाहते थे। 29 सितंबर 1894 को उन्होंने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखा था,
2: यदि हो सके तो समाचार पत्र और मासिक पत्रिका दोनों ही निकालो। मेरे जो भाई चारों तरफ घूम फिर रहे हैं वे ग्राहक बनाएंगे, मैं भी बहुत ग्राहक बनाऊंगा और बीच बीच में कुछ रुपए भेजूंगा। पल भर के लिए भी विचलित ना होना, सब ठीक हो जाएगा।
0: यद्यपि समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वामी जी की इच्छा कभी फलीभूत न हो पाई, तथापि उनके जीवन काल में तथा बाद में भी उनकी प्रेरणा से देश विदेश

0: देश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई तथा हो रही।
1: स्वामी जी ने 25 सितंबर 1894 के दिन अपने एक गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम अत्यंत प्रेरक पत्र में लिखा था,
2: तुम लोगों को एक मासिक पत्रिका का संपादन करना होगा, उसमें आधी बंगला रहेगी और आधी हिंदी, हो सके तो एक अंग्रेजी भी।
0: एक अन्य गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने 1895 में एक पत्र में लिखा था,
2: यज्ञेश्वर बाबू ने मेरठ में कोई सभा स्थापित की है, वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सुना है उनकी कोई पत्रिका भी है, काली को वहां भेज दो, अभेदानंद को, वो वहां जाकर यदि हो सके तो एक केंद्र स्थापित करे और जिससे हिंदी में उस पत्रिका का प्रकाशन हो ऐसा प्रयत्न करे, बीच बीच में मैं कुछ रुपए भेजता रहूंगा।
0: 23 वर्ष हुए पूर्वोक्त लेख स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्री राम कृष्ण संघ के बंगला मुखपत्र उद्बोधन की प्रस्तावना में लिखा था। समन्वय का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय चेष्टा भी करेगा।
1: समन्वय के पुराने अंकों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि इसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख रहा करते थे। समाचारों के लिए अलग स्तंभ था तथा विभिन्न प्रकार की अन्य रोचक सामग्री रहा करती थी, जिससे पत्रिका ने अपने उद्देश्य को पूरा करने में यथार्थ सफलता प्राप्त की थी। किंतु खेद किन्हीं कारणों से 8 वर्षों बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया।
0: इसके बाद हिंदी के रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जगत में कई वर्षों तक अंधकार ही बना रहा, जब तक कि विवेक ज्योति प्रकाशित होकर उसे दूर नहीं कर पाई। सन 1963 ईस्वी में स्वामी आत्मानंद के प्रयत्न से विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा ये हिंदी त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई। उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त करते हुए ये पत्रिका रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सन 1999 ईस्वी से ये मासिक के रूप में निकलने लगी है। आज विवेक ज्योति पत्रिका के करीब 3000 आजीवन ग्राहक, कुल प्रसार संख्या लगभग 11,250 है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
1: हिंदी जगत के इस अंधकार को दूर करने के लिए एक विवेक दीप का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी से ही प्रेरणा पाकर 1982 ईस्वी से छपरा बिहार से डॉक्टर केदारनाथ लाभ विवेक शिखा नामक हिंदी मासिक निकाल रहे हैं। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद ये उच्च स्तरीय पत्रिका उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त हो रही है और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दे रही है। स्वामी जी की पत्रिका प्रकाशन की इच्छा को पूरा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनके शिष्य आला सिंगा पेरूमल। धन्य हो आला सिंगा, धन्य हो, इतिहास में आपका नाम अमर रहेगा। स्वामी जी के अग्नि मंत्र युक्त प्रेरणादायी अधिकांश पत्र इन्हीं को संबोधित कर लिखे गए थे। 11 जुलाई 1894 के पत्र में स्वामी जी ने आला सिंगा को चेन्नई से अंग्रेजी में एक पत्रिका प्रकाशित करने की उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए लिखा,
2: ऐसी व्यवस्था करो कि पत्रिका शीघ्र प्रकाशित हो सके, मैं बीच बीच में लेख भेजता रहूंगा, एक छोटी सी समिति स्थापित करो और उसके मुखपत्र स्वरूप एक नियतकालिक पत्रिका निकालो, तुम उसके संपादक बनो। पत्रिका प्रकाशन तथा प्रारंभिक कार्य के लिए कम से कम कितना व्यय होगा इसका विवरण मुझे भेजना तथा समिति का नाम एवं पता भी लिखना। इस कार्य के लिए न केवल मैं स्वयं सहायता करूंगा अपितु यहां के और लोगों से भी अधिक से अधिक वार्षिक चंदा भिजवाने की व्यवस्था करूंगा।
0: 6 मई 1895 के पत्र में उन्होंने पत्रिका की आर्थिक सहायता का आश्वासन और अन्य उपयोगी सुझाव भी दिए।
2: वत्स, अब एक काम करो, एक माह के भीतर ही मैं पत्रिका के लिए कुछ धन भेज सकूंगा, किसी से भिक्षा मत मांगो, मैं अपने मस्तिष्क और बाहुबल से ही सब करूंगा। पत्रिका को बकवादी नहीं बल्कि शांत, स्थिर तथा उच्च आदर्श युक्त होना चाहिए। उत्तम और नियमित रूप से लिखने वाले लेखकों का दल ढूंढ लो।
1: एक माह के भीतर ही स्वामी जी ने पत्रिका हेतु धन भिजवाया। 28 मई 1895 को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
2: इस पत्र के साथ मैं $100 भेज रहा हूं। आशा है इसके द्वारा पत्र प्रकाशन में तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी, फिर क्रमशः कुछ और भी सहायता कर सकूंगा।
0: इतने पर भी जब आला सिंगा पत्रिका प्रकाशित करने में विलंब करने लगे, तब स्वामी जी ने 1 जुलाई 1895 को पुनः लिखा,
2: तुम जल्दी पत्रिका प्रकाशित कर डालो, जैसे भी हो मैं बहुत शीघ्र तुम लोगों को और रुपए भेज रहा हूं तथा बीच बीच में भेजता रहूंगा। कार्य करते चलो, अपने देश के लिए कुछ करो, इससे वे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे।
1: आला सिंगा ने चेन्नई के अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस पत्रिका का नाम ब्रह्मवादन तथा ध्येय वाक्य एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती रखा। स्वामी जी ने इसका अनुमोदन करते हुए तथा उत्साह देते हुए 30 जुलाई 1895 के पत्र में आला सिंगा को लिखा,
2: तुमने ठीक किया है, नाम तथा ध्येय वाक्य दोनों ही ठीक हैं। तुम्हारे पत्र के लिए सन्यासी का गीत ही मेरा पहला लेख है। निरुत्साहित न होना और अपने गुरु तथा ईश्वर में विश्वास न खोना। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो।
0: पर इतना सब होने पर भी जब पत्रिका नहीं निकली तो स्वामी जी अधीर हो उठे। 4 अक्टूबर 1895 को ब्रह्मानंद जी के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा,
2: जान पड़ता है चेन्नई वाले पत्रिका नहीं निकाल सके, उनमें व्यवहार कुशलता जरा भी नहीं है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।
1: स्वामी जी को क्या मालूम कि इस बीच 14 सितंबर को पाक्षिक ब्रह्मवादिन का पहला अंक प्रकाशित हो चुका था और उस समय वो पत्रिका जहाज में यात्रा कर स्वामी जी को प्राप्त हुई। 24 अक्टूबर को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
2: ब्रह्मवादिन के 2 अंक मिले, बहुत अच्छा, इसी प्रकार किए जाओ। पत्रिका के मुख पृष्ठ को कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करो और संक्षिप्त संपादकीय मंतव्यों की भाषा को कुछ सरल किंतु भावों को उज्जवल करने का प्रयत्न करो। क्लिष्ट भाषा और छंदों को केवल मुख्य लेखों के लिए रख छोड़ो।
0: स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि सदा ब्रह्मवादिन की ओर थी। अनेक पत्रों के द्वारा उन्होंने पत्रिका के बारे में व्यवहारिक सुझाव दिए, आर्थिक सहायता भेजी और अपने मित्रों को इसकी सदस्यता के लिए अनुरोध भी किया। 6 अगस्त 1896 को स्वामी जी ने आला सिंगा को उत्साहित करते हुए स्विट्जरलैंड से लिखा,
2: तुम्हारे पत्र ब्रह्मवादिन की आर्थिक दुर्दशा का समाचार मिला। लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूंगा। अपनी गति धीमी न करना, पत्र का प्रकाशन जारी रखना। डरने की कोई बात नहीं, महान कार्य संपन्न होंगे। वत्स, साहस का अवलंबन करो। ब्रह्मवादिन एक रत्न है, इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे। कार्य करते रहो, तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, यह जानकर कि ब्रह्मवादिन की सफलता से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस पत्रिका को अपना इष्ट देव बना लो और तब देखोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिल रही है।
1: 1 वर्ष तक ब्रह्मवादिन को पाक्षिक रूप में प्रकाशित करने के बाद आला सिंगा ने उसे मासिक पत्रिका में बदलना चाहा, पर स्वामी जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 22 सितंबर 1896 के पत्र में उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
2: प्रचुर लेखों द्वारा पत्रिका का आकार बड़ा कर सकोगे, ऐसा भरोसा यदि ना हो तो उसे अभी मासिक पत्रिका के रूप में रूपांतरित करना मुझे उचित नहीं लगता। अब तक तो पत्रिका का आकार या लेख आशा अनुरूप नहीं है, अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है जो छुआ तक नहीं गया है, और वो है तुलसीदास, कबीर, नानक तथा दक्षिण भारत के संतों के जीवन चरित्र। और ये जीवन चरित्र विद्वतापूर्ण तथा अच्छे ढंग से लिखे जाने चाहिए, न कि ऐसे ही मामूली तौर से, अव्यवस्थित से।
0: किंतु कुछ काल बाद ये पत्रिका मासिक में परिणत हो गई और आला सिंगा की मृत्यु के बाद सन 1914 में बंद भी हो गई।
1: ये है ब्रह्मवादिन की जीवन कथा। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। 20 फरवरी 1896 के मद्रास टाइम्स नामक संवाद पत्र ने मत दिया था,
3: दार्शनिक हिंदू धर्म का विद्वतापूर्ण भाष्य करने वाली है और साहित्यिक गरिमा से युक्त है। हाल ही में कई विद्वानों से इसे प्रशंसा मिली है, जिनमें प्रोफेसर मैक्स मूलर का नाम उल्लेखनीय है।
0: मद्रास मेल 7 जुलाई 1902 इसे भारत की अग्रणी पत्रिका के रूप में मान्य करते हुए लिखा था,
3: मद्रास की ब्रह्मवादिन पत्रिका के पीछे स्वामी विवेकानंद का हाथ था। ये वेदांत की प्रबुद्ध व्याख्या करने वाली भारत की अग्रणी पत्रिका है।
0: ब्रह्मवादिन पत्रिका का स्तर इतना ऊंचा था कि भारत या विदेश की आम जनता में इसका लोकप्रिय होना कठिन था। अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख, क्लिष्ट भाषा, संस्कृत का अत्यधिक प्रयोग आदि के बारे में आला सिंगा को सतर्क करते हुए स्वामी जी ने 23 मार्च 1896 को लिखा,
2: मेरी सफलता का कारण मेरी लोकप्रिय शैली है। एक आचार्य की महानता उसकी सरल भाषा में होती है। मैं तुम लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मवादिन इतना अधिक विशेषज्ञ प्रिय बन चुका है कि यहां पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने की आशा नहीं है। किसी मत विशेष का समर्थन भी किया जा रहा हो, ऐसी एक भी बात उसके संपादकीय में नहीं होनी चाहिए।
1: अतः आला सिंगा तथा उनके मित्र नजुंदा राव एवं अन्य मद्रासी मित्रों ने मिलकर जनसाधारण, विशेषकर युवा वर्ग के लिए अन्य अंग्रेजी पत्रिका निकालने का विचार किया। स्वामी जी ने 14 अप्रैल 1896 को डॉक्टर नजुंदा राव को एक अत्यंत प्रेरणादायी पत्र में लिखा था,
2: लड़कों के लिए पत्रिका प्रकाशित करने का जो तुम विचार कर रहे हो उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है और मैं उसकी सहायता करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए। ब्रह्मवादिन पत्रिका पद्धति का अनुसरण करो। केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन शैली तथा विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए। उदाहरणार्थ संस्कृत साहित्य की बिखरी हुई अद्भुत कहानियों को ले लो, उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का ये इतना बड़ा सुअवसर है कि जिसके महत्व को तुम सपने में भी नहीं समझ सकते।
0: ब्रह्मवादिन शुरू होने के 10 माह बाद ही प्रबुद्ध भारत नाम से उक्त पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया। ये नाम संभवतः स्वामी जी का ही दिया हुआ था। स्वामी जी कई पत्रों द्वारा इस पत्रिका के लिए व्यवहारिक सुझाव तथा प्रेरणा देते रहे। 26 अगस्त 1896 को उन्होंने डॉक्टर नंजुदा राव को लिखा,
2: जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
1: विद्वान युवक राजम अय्यर के संपादन में यह पत्रिका एक वर्ष में भारत की सर्वाधिक प्रचारित मासिक पत्रिका हो गई। प्रथम वर्ष के अंत में इसके 3,500 ग्राहक थे। चारों ओर से काफी प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद प्रारंभ होने के ठीक 2 वर्ष बाद ही, यानी जून 1898 ईस्वी में इसके संपादकीय में लिखा गया, विदाई। कारण, विद्वान संपादक श्री राजम अय्यर का आकस्मिक निधन। किंतु 2 माह के भीतर ही इसे नवीन उत्साह से पुनः प्रकाशित किया गया, इस बार रामकृष्ण मिशन के मुखपत्र के रूप में, क्योंकि इस बीच स्वामी विवेकानंद ने विदेश से भारत लौटकर सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित ये पत्रिका आज 100 वर्ष बाद भी देश भर में धर्म तथा दर्शन संबंधी श्रेष्ठ अंग्रेजी पत्रिका मानी जाती है। फिलहाल इसके लगभग 7,000 वार्षिक तथा 800 आजीवन सदस्य हैं।
0: ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत के अलावा भी कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रवर्तन स्वामी जी के द्वारा इंग्लैंड तथा अमेरिका से हुआ था।
1: इंग्लैंड में वेदांत पर यह पत्रिका कब, किस नाम से, कितने समय तक प्रकाशित हुई थी, इसकी ठीक जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, परंतु प्रकाशित अवश्य हुई थी।
0: अमेरिका में भी स्वामी जी गुडविन की सहायता से एक मासिक पत्र निकालना चाहते थे। 5 जून 1896 को उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लंदन से लिखा था।
2: गुडविन अमेरिका से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में तुम्हें इस डाक से एक पत्र भेज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य को जारी रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करना आवश्यक है। जिस रूप से वो कार्य करना चाहता है, मैं भी उसी रूप से उसमें सहायता प्रदान करने की यथासाध्य चेष्टा करूंगा।
1: रामकृष्ण मठ के लंदन केंद्र द्वारा इंग्लैंड से भी सन 1952 में एक अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट प्रकाशित हो रही है, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के सिएटल नगर में स्थित वेदांत समिति द्वारा 1996 ईस्वी में ग्लोबल वेदांत नाम से एक नई त्रैमासिक पत्रिका आरंभ की गई है।
0: रामकृष्ण मठ के फ्रांस स्थित केंद्र ग्रेड्स पेरिस से सन 1962 से वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका फ्रेंच में प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार रामकृष्ण मठ के जापान स्थित केंद्र द्वारा जापानी भाषा में एक द्विमासिक फुमेत्सु नो कोताबा अर्थात सार्वभौमिक संदेश निकाली जा रही है। जर्मन भाषा में भी वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका सन 1978 से प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि कई देशों से विभिन्न भाषाओं में वेदांत संबंधी पत्रिकाएं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित होकर निकल रही हैं।
1: श्री हरमोहन मित्र, कई पुस्तकों के प्रकाशक, मास्टर महाशय श्री महेंद्र नाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री जीसी घोष, बंगाल के प्रख्यात कवि तथा नाटककार श्री रामकृष्ण के ये सभी अंतरंगग्रही शिष्यगण एक पत्रिका निकालने में सक्षम थे। वैसे ही स्वामी जी के गुरु भाई काली महाराज स्वामी अभेदानंद, हरि महाराज स्वामी तुरियानंद तथा शरत महाराज स्वामी सारदानंद भी इस कार्य के लिए समर्थ थे। ये तीनों वेदांत प्रचार के लिए विदेश भी गए। इन सभी से निराश हो जाने पर स्वामी जी ने अपना ध्यान अंग्रेजी पत्रिकाओं पर केंद्रित किया।
0: इस बीच अप्रत्याशित रूप से एक युवक पर पत्रिका का भूत सवार हुआ। वे थे स्वामी जी के गुरु भाई सारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतांत। अपनी कम उम्र के कारण इस प्रकार के कार्य के लिए वे गणना में ही नहीं थे। अतः जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों के समीप पत्रिका निकालने का अपना निश्चय व्यक्त किया, तब उन लोगों ने इसे हंसकर उड़ा दिया। तथापि हिम्मत न हार उन्होंने स्वामी जी की प्रसन्नता का अनुमान हम सहज ही कर सकते। उन्होंने तत्काल स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा।
2: सारदा बंगाल में पत्रिका निकालने की बात कर रहा है, अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें मदद देना ये कोई बुरा विचार नहीं है। किसी को उसकी योजनाओं में निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्रिका के बारे में तुम्हारा विचार अति उत्तम है। पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, कोई चिंता मत करो। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 रुपए तत्काल भेज दूंगा। ईसाई तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं। अब तुम्हें भी अपने ग्राहकों की समस्या है। इसका एकमात्र उपाय है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहो। जहां कभी भी बंगला भाषा का प्रचलन हो, वहां पर लोगों के माथे पत्रिका मढ़ देना। पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। आगे बढ़े चलो। शशि, शरद, काली आदि अब सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाएं। बैठे बैठे क्या हो सकता है, तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूद कर सबसे आगे पहुंच जाओगे। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। तूफान मचा दो तूफान, किसी को चीन भेज दो, किसी को जापान। यह कार्य गृहस्थी द्वारा नहीं हो सकता। सन्यासियों को हुंकार के साथ गरजना होगा, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो।
0: इसके बाद स्वामी जी कई पत्रों द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के लिए जोर देते रहे, पर पत्र पत्रिका का प्रकाशन पिछड़ता ही रहा। मूल कारण था अर्थाभाव। तब स्वामी जी ने मिस मैकलाउड से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा।
2: कोलकाता से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा, यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा।
1: ऐसा लगता है कि मिस मैकलाउड इसके लिए सहर्ष राजी हुई थी, क्योंकि 20 मई 1898 को स्वामी जी ने कुछ रुपए भेजकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा।
2: पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है। 1200 रुपए पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं, उनको उसी कार्य के लिए रख देना।
0: इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 17 जुलाई 1898 को स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी को पुनः लिखा।
2: तुमने जो लिखा है उसमें मेरा वक्तव्य इतना ही है कि बंगला भाषा में पत्रिका को आत्मनिर्भर बनाना कठिन है, किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनाएं तो ऐसा करना संभव है। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेचारा शारदा एक बार निराश हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कर्मठ और निस्वार्थ हो, उसके लिए यदि 1000 रुपए पर पानी भी फिर जाए तो क्या नुकसान है।
1: अंततः उद्बोधन के नाम से जनवरी 1899 के बंगाब्द 1305 के 1 माघ को पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त 1000 रुपए के अतिरिक्त 1000 रुपए श्री हरमोहन मित्र से ऋण के रूप में लिए गए थे और पत्रिका दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई। प्रारंभ होने के 10 वर्ष के बाद से आज तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है।
0: इस पत्रिका का नाम स्वामी जी ने ही दिया था और उसकी उन्नति के लिए अनेकानेक आशीर्वाद दिए थे। इसकी प्रस्तावना भी स्वामी जी ने ही लिखी थी तथा समय समय पर इसमें कई लेख भी लिखे थे। स्वामी जी इस पत्रिका से कितना प्रेम करते थे, इसका कुछ अनुमान श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती से हुए उनके वार्तालाप को पढ़कर होता है। इस वार्तालाप से ये भी पता चलता है कि स्वामी जी के इस पत्रिका की सफलता, उसकी भाषा तथा उद्देश्य के बारे में क्या विचार थे। अतः इसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा।
2: उद्बंधन देखा है
3: कैसे?
2: अरे, इस पत्र के भाव भाषा सभी कुछ नए ढांचे में गढ़ने होंगे।
3: कैसे?
2: श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना ही होगा, साथ ही बंगला भाषा में नया जोश लाना होगा। उदाहरणार्थ, बार बार केवल क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है। विशेषण देकर क्रियापदों का प्रयोग घटा देना होगा। तू ऐसी भाषा में निबंध लिखना शुरू कर दे, पहले मुझे दिखाकर फिर उद्बोधन में प्रकाशित होने के लिए भेजते जाना।
4: महाराज, यह पत्र हर 15 दिन के बाद प्रकाशित होगा। हमारी इच्छा है कि यह साप्ताहिक हो जाए।
2: ये तो ठीक है, परंतु उतना धन कहाँ है। श्री रामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपए की व्यवस्था हो गई तो कुछ समय पश्चात इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियां छाप कर कोलकाता की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती हैं।
0: स्वामी विवेकानंद जी की पत्रकारिता के बारे में हम अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में आप सुनेंगे गायन कीर्ति दुबे और पंडित छन्नूलाल मिश्र का। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं कीर्ति दुबे।

दादरा, बनारस का दादरा कैसा होता है कि जो दिल को झुमा दे, वो है दादरा। नजर के ऊपर है, एक ही नजर के चार रूप होते हैं। कैसे कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची करते हैं तो दुआ मांगते हैं प्रभु से, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर नीची की तो शर्मा के नजर नीचे होता है,

अब अंत में हमारे भोलेनाथ की होली विचित्र होली है और इसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। देखिए कैसी होली है। साल में एक बार कृष्ण राधा की होली होती है, जलता है होलिका, और यहाँ भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर रोज होली जलाते हैं। और कैसे होली खेलते हैं,

उन्होंने जब होली दिखा तो क्या कहती है, भूतनाथ की मंगल होरी। ये होली सुन

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन, कमी तुझ में नहीं तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन और ठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का, सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत
1: श्रीमान।
0: हुए हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई है।
0: ओ, अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
0: सर, मैं बताता हूं मैं। आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट, प्रति बच्चे एवरेज आया 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी, अरे वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन?
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना, ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: ओ, मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं, नहीं सर वो।
1: हाँ
0: ओ, भाई बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुर सेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर?
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: Sit down, मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: अच्छा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया। हाँ। तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए। अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4। सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोचकर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
2: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेबकटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी,
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
2: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
2: ना सर,
0: फिर बुलाइए बुलाइए उसे, बुलाइए बुलाइए। चतुर्सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
3: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
3: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं, इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए, और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। ये आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर, इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
4: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे है ना?
4: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
3: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
3: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

0: 98 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, जिसे पेश करेंगे मनीष पिंगले और साथी, और उसके बाद सुनिएगा कबीर गायन, जिसके कलाकार होंगे भैरू सिंह चौहान और साथी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, प्रस्तुति मनीष पिंगले।

तो श्रोताओं, इस वादन के बाद अब आपको हम सुनवा रहे हैं कबीर गायन, जिसे पेश कर रहे हैं भैरव सिंह चौहान और साथी कलाकार।

देखिए हमारी सबकी ये शरीर रूपी चुनरी को सदगुरु ने सराबोर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी रंग के माध्यम से लाल लाल कर दीनी है। आगे मोरे सदगुरु जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी। पद प्रस्तुत हैं।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी है अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए है की अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5,
2: है?
3: यानी 1 सिलेंडर अब हमें

0: भाई नहीं मिलने वाली। भाई उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
1: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
0: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
1: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
0: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
1: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो। थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
0: अच्छा बनाती हूँ।
1: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
0: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे तूने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
1: मालूम है भाई साहब, रो मत रो नको, मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना, वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
0: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
1: रो,
0: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
1: हाँ,
0: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
1: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ है मेरा लंच बॉक्स, है ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: आ यार, अरे हर रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफ, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुन सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गिला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर-भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल दो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तावे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाद सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांस हुए। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभाल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए भाई, खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते, उसे पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है, आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है, पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बुझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह, भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं। अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ, जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अठारह की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम कुछ

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश का।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। शाम के 5 बजे हैं और अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप सुनेंगे सांध्यकालीन प्रसारण। आज शाम की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो इसके पहले आइए हम आपको बताए देते हैं कि आज आप रात्रि 10 बजे तक कौन कौन से कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा अक्षय निधि के बाद मेरे साथ, यानी आपके अपने पूर्वा के साथ। शाम 6 बजे का वक्त होगा वतन का राग का। श्रोताओं, आज दामोदर हरिचापेकर की जयंती है तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम। सुनना ना भूलिएगा शाम 6 बजे। 6:30 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम बाल सभा का। श्रोताओं, आज बाल सभा में बातें होंगी नशे का साथ जिंदगी का नाश इस शीर्षक पर। 7 बजे आप सुनेंगे हमारी सेना हमारा गर्व। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी सियाचिन युद्ध के भाग 2 की। शाम 7:30 बजे सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भक्ति गीत कलापिनी कोमकली से। और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे संस्थान के बारे में जिसका नाम है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 8:30 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा का, जो कि आधारित होगा केशव चंद्र सेन पर। और रात्रि 9:30 बजे आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए। आइए सुनते हैं अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 154 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं विष्णु और छंद है त्रिष्टुप।
4: विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि, यो अस्क भायदुत्तरम सदस्थम विचक्रमाणेस्त्रे धोरुगायः। जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो तीन पगों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, उन विष्णुदेव के वीरता पूर्ण कार्यों का कहां तक वर्णन करें। प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, यस्यो रुषु त्रिषु विक्रमणेश्व धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णुदेव के तीन पदों पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, अतएव भयंकर हिंस्र और गिरिकंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करता है। प्रविष्णवे शूसमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय विष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्तमेको विममे त्रिभिरित पदेभिः। अकेले ही जिन विष्णुदेव ने मात्र 3 कदमों से इस अति व्यापक दिव्य लोक को नाप लिया था, उन मेघों में स्थित अत्यंत प्रशंसनीय जल वृष्टि में सहायक सूर्य रूप विष्णुदेव के लिए प्रखर भावना से उच्चारित हमारा स्तोत्र समर्पित है। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उ त्रिधातु पृथ्वी मुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। जिन विष्णुदेव के 3 अमृत चरण अपनी धारण क्षमता से 3 धातुओं सत रज और तम से पृथ्वी एवं द्युलोक को आनंदित करते हैं, वे विष्णुदेव अकेले ही सारे भुवनों लोकों के एकाकी आधार हैं। तदस्य प्रियमभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य स ही बंधुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सह। देवों के उपासक मनुष्य जहाँ पहुंचकर विशेष रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं, विष्णु देव के उस प्रिय धाम को हम भी प्राप्त करें। विष्णु देव महापराक्रमी वीर इंद्र के बंधु हैं। विष्णु देव के उस उत्तम धाम में अमृत जल धारा सदा ही प्रवाहित रहती है। तावाम वास्तुन्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि। हे इंद्र और वरुण देव, आप दोनों से हम यजमान दंपति अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल अर्थात गृह चाहते हैं जहाँ अति तीक्ष्ण स्वास्थ्य प्रद सूर्य रश्मियां प्रवेश कर सकें। इन्हीं श्रेष्ठ गृहों में अनेकों से उपास्य सामर्थ्य संपन्न विष्णुदेव के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वप्रकाशित होती हैं, अर्थात वहां देव अनुग्रह अनवरत बरसता रहता है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 154 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंदी के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने सारे कर्तव्यों को, कामों को और उत्तरदायित्वों को भूल जाएं और केवल ईश्वर को समर्पित हों, बल्कि हम काम इस तरह से करें जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है, लेकिन भक्ति और हम प्रार्थना ऐसी करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है।

श्रोताओं, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम निराशा से घिर जाते हैं, कुछ सुझाई नहीं देता, आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा तब होता है जब अक्सर हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं होता या जैसा हमने सोचा था वैसा हम पाते नहीं हैं। तो ऐसे वक्त बस यही सोचें कि हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर परमेश्वर की बनाई हुई योजनाएं होती हैं। यदि हम उन पर भरोसा करेंगे तो हम कभी हार नहीं सकते। तो ईश्वर से ज्यादा और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।

कभी कभी जब हम गहराई से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अपनी सृष्टि के रचना के माध्यम से जगह जगह प्रकट किया है। पेड़, पौधे, पर्वत, नदियां, सागर, ये वायु, ये आकाश, ये सब उसी की तो मौन अभिव्यक्तियां हैं। जब हम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं तो संभव है कि हम उसी दिव्य उपस्थिति का स्पर्श कर रहे हों जिसे हमारी ये आंखें सीधे सीधे नहीं देख पाती। इसीलिए ईश्वर को सब में समाया मानते हुए ही उसे सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट मानना चाहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है भक्ति संगीत। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, जब भी हम प्रार्थना करें तो ये आवश्यक तो नहीं है कि हम किसी प्रार्थना कक्ष में हो या मंदिर में या किसी प्रार्थना करने वाले स्थान में, मस्जिद में, मंदिर में या गिरजा में हो। प्रार्थना करते वक्त इंसान का किसी विशेष स्थान में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्ति मन में ईश्वर का विशेष होना बेहद आवश्यक है।

बुद्धि इंसान का एक ऐसा गुण जिसके लिए विद्या का अर्जन करना आवश्यक नहीं है। बुद्धि तो उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरी ही दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। तो जब भी प्रार्थना करें, ईश्वर से सद्बुद्धि जरूर मांगें।

श्रोताओं, देखा जाए तो ये जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी छेद कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे ये जीवन

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

1898 का साल था। एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में उस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने भरी अदालत में जज के सामने कहा, क्या इससे भी कोई कठोर दंड है? यदि हाँ तो मुझे वही दिया जाए। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका करने वाले और आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले वो महान क्रांतिकारी थे दामोदर हरी चाफेकर, जो भारतीय स्वाधीनता इतिहास के पन्नों में दर्ज चाफेकर बंधु की त्रयी के सबसे बड़े भाई थे। इस क्रांति त्रिवेणी की सबसे प्रबल धारा, जिन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी इस पुनीत महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दामोदर हरी चाफेकर, बालकृष्ण हरी चाफेकर और वासुदेव हरी चाफेकर, इन तीनों सगे भाइयों का बलिदान एक दुर्लभ घटना है। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही हैं। दामोदर हरी चाफेकर का जन्म 24 जून सन 1869 को पुणे के पास स्थित चिंचवण नामक स्थान पर हुआ था। ये एक चित्तपावन ब्राह्मण परिवार था जो मूलतः कोंकण के बेलानेश्वर से संबंध रखता था। उनके पिता का नाम हरि विनायक चाफेकर और माताजी का नाम द्वारका चाफेकर था। पिता हरि विनायक एक प्रसिद्ध कीर्तनकार और कथावाचक थे। यही कारण है कि दामोदर हरि चाफेकर की विशेष रुचि गायन तथा काव्यपाठ में थी। दामोदर हरि चाफेकर बचपन से ही खेलकूद और व्यायाम के शौकीन थे। लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने अपना शरीर अत्यंत बलिष्ठ बना लिया था। उनके मन में देश के प्रति अगाध प्रेम था और वो युवाओं को भी लगातार प्रेरित किया करते थे। एक बार उन्होंने पुणे में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, आज आवश्यकता है कि हम फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों को छोड़कर चट्टानों पर चढ़ाई और अस्त्र शस्त्र चलाने जैसे कामों में पारंगत हों, ताकि समय आने पर हम देश के लिए कुछ कर सकने में समर्थ हों। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक युवा उनके संपर्क में आए, जिन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा सैन्य अभ्यास भी किया। इसके लिए उन्होंने हितेच्छु मंडल नाम की संस्था भी स्थापित की थी। इस संस्था में उनके साथ उनके दोनों भाई भी सक्रिय थे। यहाँ युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता और देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान भी किया जाता।

दामोदर हरि चाफेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यंत प्रभावित थे। उन दिनों तिलक जी का केसरी समाचार पत्र छपा करता था, जिसके माध्यम से दामोदर हरि चाफेकर तिलक जी के विचारों और लेखों से लगातार जुड़े रहते थे। अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनके मन में ज्वाला प्रज्वलित थी। यही कारण है कि तीनों भाइयों ने बंबई में रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत कर अपना प्रबल प्रतिरोध दर्ज किया था। तिलक जी ने एक बार कहा कि शिवाजी ने अपने समय में अत्याचार का विरोध किया था, इस समय अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में तुम क्या कर रहे हो। इस सवाल ने दामोदर हरि चाफेकर को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद अपने दोनों भाइयों के साथ उन्होंने क्रांति मार्ग अपना लिया। तिलक जी की ही तर्ज पर चाफेकर बंधुओं ने पुणे में शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का सार्वजनिक आयोजन भी शुरू किया। इस तरह दामोदर हरि चाफेकर ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया कि वो भी अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में क्रांति मार्ग अपनाएं। इसी बीच सन 1896 के अंत में पुणे में प्लेग फैला और साल भर के भीतर इसका संक्रमण इतना अधिक फैला कि इसने महामारी का रूप ले लिया। अनगिनत लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी। अंग्रेज अधिकारियों ने रिपोर्ट मंगवाई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक प्लेग कमेटी बनाई गई। वॉल्टर चार्ल्स रैंड इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसने प्लेग की रोकथाम के आदेश जारी किए। रैंड और उसके साथी अधिकारियों को प्लेग नियंत्रण के नाम पर किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अधिकार का अंग्रेजों ने दुरुपयोग आरंभ कर दिया। अफसर बेधड़क लोगों के घर में घुसते, प्लेग के लक्षण ढूंढते। महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्षण की जांच कपड़े उतरवा कर की जाती। इस तरह महिलाओं के साथ शोषण और अत्याचार की नई कहानी शुरू हो गई। सैनिक घर का सामान भी लूट लेते तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करते। ये अत्यंत भयावह और विकट स्थिति थी। इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों के मन में रैंड के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। दामोदर हरि चाफेकर ने रैंड के अत्याचारों का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने बारूद और रिवॉल्वर की व्यवस्था कर ली। इसी बीच एक मंदिर के पुजारी को प्लेग हो गया और वो मंदिर छोड़कर चला गया। दामोदर हरि चाफेकर ने मंदिर में पुजारी का काम स्वीकार किया ताकि किसी को भी शक न हो। मंदिर के बगल में ही 14वीं बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का गोदाम था। वहां के सुरक्षा कर्मियों से नजर बचाकर उन्होंने दो राइफल्स की भी व्यवस्था कर ली। मन में एक ही संकल्प था, पुणे की जनता को रैंड के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना।

दामोदर हरि चाफेकर ने रैंड के वध की पूरी तैयारी कर ली थी। अब अपने साथियों को लेकर उन्होंने रैंड की पहचान तय करने का काम किया। 3 महीने तक अलग अलग स्थानों पर उसका पीछा किया गया। रैंड कब कहां आता जाता है, उसकी आदतें क्या हैं, इस तरह की सारी महत्वपूर्ण जानकारी रैंड के गाड़ीवान, पोस्टमैन और अन्य संबंधित व्यक्तियों से मित्रता करके इकट्ठा कर ली गई। इस तरह रैंड की सूचना एकत्रित कर ली गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। इसके बाद दामोदर हरि चाफेकर ने योजना को अंतिम रूप दिया। 22 जून 1897 का दिन तय हुआ, जब रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाई जाने वाली थी। नगर के काउंसिल हॉल में दोपहर को रैंड को मारना था, लेकिन रैंड वहां नहीं मिला। फिर उसे सेंट मैरी चर्च में ढूंढा गया, वहां भी सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। अब गवर्नमेंट हाउस वो ठिकाना था जहां रैंड को जाना था। चारों ओर सजावट और धूमधाम थी। सभी क्रांतिकारी पूर्व निर्धारित स्थानों पर आकर छुप गए। अब इंतजार था तो बस रैंड की वापसी का। गवर्नर हाउस में जश्न समाप्त हुआ और रैंड की बग्घी गवर्नर हाउस से लौटती हुई दिखाई दी। संकेत शब्द का इशारा मिला, गोंडिया आला रे। जैसे ही बालकृष्ण चाफेकर ने ये संकेत सुना, उन्होंने गोली चला दी। लेकिन संयोग ही था कि इस बग्घी पर लेफ्टिनेंट आरिस्ट बैठा हुआ था। एक जैसी दो बग्घियों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन दामोदर चाफेकर अत्यंत सजग थे। वो तुरंत समझ गए कि गलती हो गई है, ये रैंड नहीं है। उन्होंने फुर्ती से महादेव विनायक रानाडे के साथ मिलकर रैंड पर हमला कर दिया। रैंड बुरी तरह घायल हो गया और 3 जुलाई 1897 को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिला कर रख दिया। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। उन पर 20,000 के इनाम की घोषणा की गई। काफी दिनों तक बचने के बाद द्रविड़ बंधुओं की गद्दारी के कारण अंततः दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची तैयार की। मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बीच गिरफ्तार होने से पहले उनके छोटे भाई वासुदेव चाफेकर ने महादेव विनायक रानाडे और खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ बंधुओं को मारकर उन्हें गद्दारी करने की सजा दी। इस तरह तीनों भाइयों पर मुकदमा चला और तीनों ही भाइयों को फांसी की सजा हुई। जब दामोदर हरि चाफेकर जेल में थे, तब तिलक जी उनसे मिलने आए और उन्हें गीता दी। अपने गुरु तिलक जी से प्राप्त ये भगवत गीता उनका संबल थी। 18 अप्रैल 1898 को यरवदा जेल में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इन अंतिम पलों में उनके हाथ में यही गीता थी। जैसे निष्काम भाव से अपना काम करके वो गीता के उपदेशों को याद करते हुए ही अनंत की यात्रा पर चल पड़े। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, आइए सुने कार्यक्रम बाल सभा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं।

0: बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
1: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
0: आप बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते, और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे।
1: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
0: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
1: जी,
0: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
1: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले, कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
0: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
1: जी।
0: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं?
1: जी।
0: है ना, तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया?
1: जी।
0: ठीक है, पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
1: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
0: जी,
1: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
0: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं
1: जी,
0: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो
1: जी,
0: यही कहा था आपसे
1: जी।
0: आप याद रखिए, लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
1: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
0: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
1: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया तू ये करने लगा, तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
0: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है, ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं, तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
1: जी ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज़ की फ़ोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
0: क्या हुआ फिर?
1: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज़ हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज़ तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज़ गलत है।
0: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
1: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
0: जी।
1: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
0: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं, तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
1: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
0: जी।
1: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
0: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
2: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
2: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब ये था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था। लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठ कर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
0: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
2: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
0: जी।
2: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
0: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं, और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना। एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
1: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते हैं तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी। और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
0: में तब्दील हो गई,
1: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदि होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि खत्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
0: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
1: जी,
0: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
1: जी,
0: सब तरफ अंधेरा है, दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुँच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियाँ होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो, तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से। क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है। लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
1: जी,
0: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
1: जी, बिल्कुल।
0: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
1: जी,
0: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे, उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
2: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था, जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई। बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला। जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है, इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ। फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
0: कोई तो सुने, पहली बात
2: कोई तो
0: बात
2: सुने। बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे। जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी, पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत, जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। ये चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
0: ना जाए।
2: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला की, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया, वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता है ना कि अगर हम अपने घर
0: मेरा पैसा
2: मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं टेंथ या नाइन्थ में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे। इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तो इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
0: हद में रहो
2: अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई, मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
0: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पर बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सके, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे, और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
1: जी बिल्कुल
0: आ सकता है।
1: जी जी।
0: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम भारतीय सेना के इतिहास को जानते समझते हुए आ पहुंचे हैं साल 1984 तक। ये वो समय था श्रोताओं, जिसे प्रगतिशील दौर कहा जा सकता है, स्वयं हमारे देश के लिए और साथ ही हमारी भारतीय सेना के लिए भी। ये दौर था नए तौर तरीकों का, नए उपकरणों का और तकनीकों का, नई चुनौतियों का। बस पुराना और चिरकालीन था तो वो था देश के प्रति बलिदान का वो जज्बा, जिसके दम पर हर चुनौती को भारतीय सैनिक स्वीकार करता है और एक गौरव गाथा लिख जाता है। श्रोताओं, यही जज्बा आज तक भी बरकरार है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में देशभक्ति के ऐसे ही जज्बे से लबरेज एक ऐसे ऑपरेशन का हमने जिक्र किया था, जिसका नाम है सियाचिन का युद्ध, या जिसे कहें ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन यानी बर्फ का, समझिए रेगिस्तान, जहां -30 डिग्री से -50 डिग्री का चिल्ड तापमान, बर्फीले तूफानों का सिलसिला चालू होने पर कब थमेगा इसकी कोई थाह नहीं, जहां जंग दुश्मन से ज्यादा मौसम से लड़ना पड़ती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आइए जानते हैं कि बाना पोस्ट, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में किया था, उस पर कब्जे के बाद आगे क्या हुआ, कार्यक्रम की आज की कड़ी में। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग
2: जयहिंद पूर्वा जी।
0: जयहिंद सर।
2: जयहिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था
0: जी,
2: कैद पोस्ट को कैप्चर करके उसे हमने फिर बाना पोस्ट का नाम दिया था
0: जी,
2: क्योंकि उसमें जो अटैक लीड किया था, जिसे हमने जिक्र किया था, नायब सरदार बाना सिंह साहब ने किया था, जो कि बाद में ऑनरी कैप्टन बने थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये पोस्ट खोने के बाद जो कि पाकिस्तान का उस समय का इकलौता फुटहोल्ड था सॉल्टर और रिच पे, जैसे हमने बताया था, उन्होंने दोबारा अटैक किया मिला फांडला पे कब्जा करने के लिए सितंबर में, ठीक है। और इट वाज अ मेजर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट था कि किसी भी तरह से अपना सॉल्टर और रिच पे फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना है। तो ये अटैक जो है, इंडियन फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से इसको रिपल्स किया
0: जी,
2: और इसमें जो है ये अटैक पाकिस्तान का बुरी तरह से फेल हुआ था, जिसमें कि उनको बहुत ही मतलब भारी असफलता देखने मिली और काफी उनका नुकसान भी हुआ था।
0: सर, ये बात 1984 की ही है?
2: नहीं, ये सितंबर 87 की हम बात कर रहे हैं, ये जब हमने बाना पोस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद की बात है, जब हमने वो कैद पोस्ट कैप्चर करके बाना पोस्ट बना दी थी
0: जी।
2: तो पाकिस्तान किसी भी तरह चाहता था, तब उन्होंने मिला फांडला पे जो नीचे
0: दोबारा
2: हमला किया था मिला फांडला पे। अब ये जो हुआ, ये फेलियर हुआ, बट पाकिस्तान वाज डेस्परेट कि किसी भी तरह से हमको सॉल्ट और रिच पे कहीं ना कहीं जो है अपना हक जमाना है, ठीक है, जो कि जबरदस्ती वाली बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एरिया एब्सोल्युटली क्लियर था कि ये इंडियन टेरिटरी है। पाकिस्तान इसमें अपना हक जो जमा रहा था, वो एक इमेजिनरी लाइन को लेके, जैसे हमने बताया के कारण जो है जमा रहा था। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो अपनी देश की रक्षा के लिए जो है तत्पर थे और खड़े थे और बहादुरी से डटे हुए थे, ठीक है, ओके। तो 89 में, मार्च 89 में, तो एक वहां पे और चुमिक ग्लेशियर रीजन है,
0: अच्छा,
2: जैसे जो सोल्टोरो रिज जाती है उससे वेस्ट में यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो ग्लेशियर निकलते हैं तो उसमें एक चुमिक ग्लेशियर फ्लो करता है। ये एरिया भी जो है मतलब चाचिंग ग्लेशियर के पास में है, लेकिन उसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ऊंची मतलब पहाड़ियां हैं, सीधी पहाड़ियां हैं, वर्टिकल जो हाइट्स हैं। तो किसी तरह से इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे एक अपनी पोस्ट बनाई एंड वो पोस्ट अब ऐसी थी कि उससे जो आर्टिलरी फायर है
0: जी।
2: वो हमारी जो सप्लाई रूट्स वगैरह थी जो कि सियाचिन ग्लेशियर से में चलती है
0: अच्छा।
2: उसके ऊपर वो फायर करने में सफल हो रहा था। ये जो पोस्ट थी लेकिन ये ऐसी थी कि अगेन इसमें जो है वर्ड अभी मैंने बताया कि जो वहां तक पहुंचना एक तरह से नामुमकिन था, खड़ी चढ़ाई थी, नामुमकिन था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ये चैलेंज था कि इसको तो हम रहने नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए जो है मूवमेंट मुश्किल है,
0: जी बाधा पहुंचाएगा,
2: जी बिल्कुल। और आर्टिलरी फायर हो रहा है कंटिन्यूअसली तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोस्ट, आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होती है उससे जो है। इसमें एक जब एरियल रेकी करी गई तो पाया गया कि ये जो पोस्ट थी बहुत जो छोटी पोस्ट थी वो एक पीछे चुमिक बेस बनाया था
0: अच्छा।
2: जहां से कि वो उसको मेंटेन कर रहे थे तो आर्टिलरी के ऑफिसर्स ने प्लान किया कि एक उन्होंने तरीका निकाला जो है इट वाज अ वेरी इनोवेटिव है कि उसके किसी तरह से उस बेस के ऊपर आर्टिफाइस उसको डिस्ट्रॉय किया जाए
0: अच्छा।
2: तो ये पूरा प्लान हुआ, प्लान होने के बाद जो है जो आर्टी के ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स होते हैं जो फायर डायरेक्ट करते हैं
0: अच्छा।
2: उनको उस जगह पे प्लेस किया गया जहां से कि वो लोग देख सके जैसे भी हो एंड इट वाज अ बफोस फायर जिसने कि उस बेस को डिस्ट्रॉय करा फायर करके,
0: दुश्मन को पता भी नहीं चला कि ये कहां से हमला हुआ है,
2: कहां से हमला हुआ
0: एंड
2: दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है ओके। और वो जब बेस बर्बाद हुआ ठीक है आर्टी फायर से एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो उसको मेंटेन कर सके एंड उनको वो विड्रॉ करनी पड़ेगी जो है। अच्छा अब क्या हुआ कि जब ये हमको पता चला कि हम इतने हाई एंगल से भी पीछे जो है फायर कर सकते हैं तो इट बिकेम ए न्यू ओपनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टी गन्स कि आर्टिलरी गन्स ऐसे भी मतलब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो एंड इट बिकेम ए मेजर सक्सेस ऑल्सो जिससे कि आगे चल के हमने सोल्टोरो रिज के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश नहीं करने दिया गया था। अब ये जो लोकेशन है सोल्टोरो रिज पे इसको AGPL कहा जाने लगा, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन ठीक है ओके। अब दोनों आर्मीज जो है उन्होंने अपने डिप्लॉय हो गई थी, फियर्स फाइट चल रहा था, दोनों चाहती थी कि अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे को यह था कि हम ये हमारी देश है, हमारा जमीन है, हम इसमें पाकिस्तान को आने नहीं देंगे। पाकिस्तान चाहता था किसी भी तरह से
0: कब्जा
2: करे उसके ऊपर ताकि वो उसको फिर आगे चल के अपना बना सके बता सके। ये धीरे धीरे जो है फायरिंग ट्रूप्स का अनाउंसमेंट ज्यादा होता चला गया,
0: अच्छा
2: वेपन्स भी जो है उस तरह से यू कैन से अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया, आर्टिलरी की गन्स आ गई, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ही आ गई ठीक है तो एंड ट्रूप्स भी बढ़ने लग गए एक के बाद मतलब धीरे धीरे धीरे जो है बढ़ते रहे क्योंकि वहां पे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया कि हम सिर्फ वहां पे दुश्मन से ही नहीं लड़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट से क्लाइमेट से भी लड़ रहे हैं। अच्छा ये क्या है कि दोनों जो है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी जो है वहां पे आमने सामने ऑलमोस्ट
0: अच्छा।
2: कई जगह पे तो खासकर बिला फोंडला वाले गरी एरिया में अगर आप देखेंगे और नीचे कई जगह पे देखेंगे तो बहुत मतलब
0: करीब है जी।
2: तो यहाँ पे आपको 24/7 विजिलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है
0: जी।
2: अब मौसम चाहे कितना भी खराब हो मतलब वहां पे बर्फ पड़ रही है, ब्लिजर्ड आया हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी एक सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं वहां छोड़ सकता
0: जी।
2: क्योंकि उसको मालूम है यही मौसम है जबकि उसके ऊपर अटैक के ज्यादा चांसेस है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहां पे ड्यूटी जो कर रहा है जो
0: 24 घंटे
2: चौकन्ना रहना है क्योंकि वहां आप फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है
0: बिल्कुल सही
2: क्योंकि फेलियर अगर हो गया तो आप मतलब खत्म हो जाएंगे ठीक है ओके। जान भी जाएगी और जो है जहां
0: जगह
2: भी जाएगी ठीक है तो ये यहाँ पे फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये वेदर के कारण जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था वहां पे जो है एंड वेदर के अलावा जैसे हमने बात भी करी है कि वहाँ एवलांचेस बहुत रेगुलर आते थे, हाँ जी, कभी भी मतलब जो खुलते थे, ठीक है, क्योंकि क्या होता था, स्नो ब्लिजर्ड आया तो पता चल रहा कि पूरा का पूरा स्नो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो वहाँ मालूम चला कि जो है क्रेवेस खुल गया है, धूप पड़ रही है तो भी हो जाता है। ऐसे इलाके में मेंटेनेंस करना, कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस, सप्लाई का मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी इलाके में अगर आप देखेंगे जो लीडरशिप है दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। इस जगह पे जो लीडर्स हैं वो अपने जवानों को मोटिवेट करके रख सकें
0: जी।
2: उसके लिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है हर तरह से होता है कि क्या जवान के पास पूरा राशन पहुंचा है
0: जी।
2: क्या उसकी ड्यूटी ठीक से लगी है, क्या उसका मोराल ठीक है, क्या उसके घर से चिट्ठी आ रही है, क्या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं
0: जी।
2: है, मैंने किसको जो है अभी बाहर भेजा है, क्या वो फिजिकली उस हिसाब से फिट है, या मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑफिसर्स के लिए, लीडर्स के लिए। एंड ये आई मस्ट से सो कि आई टेक प्राइड इन इट कि वी नेवर लेट डाउन, ठीक है, एनीवन इन दिस, ठीक है, ऑफिसर्स जब भी हमने देखा भी है हर जगह जो है उन्होंने अपनी जो है इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ लीडरशिप। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन जो है चैलेंज रहता है जिसमें कि वो वहां पे हमें फेस करना पड़ रहा था। अच्छा, इस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण
0: जी,
2: इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों जो आर्मीज हैं दे सफर्ड वेरी हाई कैजुअलिटी,
0: दोनों तरफ नुकसान
2: हो रहा था, क्योंकि इंक्लीमेंट वेदर तो दोनों के लिए एक बार जैसा है, फायरिंग के कारण भी जो है नुकसान चल रहा था। पहले जब इनिशियली तो जब पोस्ट बनी थी तो उनमें बहुत ही मंडेन फैसिलिटीज होती थी, मतलब जो है क्योंकि जो शुरू में लोग गए थे वो तो जाते ही मतलब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उनके लिए तो सबसे प्राइमरी टास्क हो गया था कि भाई किसी तरह से अभी वाला हमें लड़ना है, ठीक है, उनके लिए अपना जो कंफर्ट है दैट बिकेम सेकेंडरी, द कंट्री केम फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ओके। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, जो है स्नो हट्स वहाँ पे खड़ी हुई जो कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, देन स्पेशल क्लोथिंग वगैरह के जो मिलना शुरू हुई, तो ऐसे करते करते जो है इम्प्रूवमेंट तो आया,
0: बदलाव का दौर आया, प्रगतिशील हम भी थे, देश भी और सेना भी।
2: सही बोला आपने
0: जी। तो बात यही आती है सर कि हम फिर ये जो सप्लाई होती है आज भी जो है वो किस तरह से सैनिकों को पहुंचाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है हम लोगों के लिए, हम आम जनों के लिए तो बड़ा ही एक रोचक सवाल है मेरे लिए तो स्पेशली, कि उन तक रसद भी और जो उपकरण है जो आप जवान जो यूज करते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं।
2: देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है
0: जी,
2: उसमें वहाँ कुछ नहीं उगता, वहाँ कोई नेचुरल सोर्स नहीं है
0: जी,
2: वहाँ से बर्फ है, तो जो भी वहाँ पे पोस्ट है वहाँ पे हर चीज
0: जी
2: आपको नीचे से सप्लाई करनी पड़ती है, वो राशन हो गया, केरोसिन हो गया जो है, उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, एमुनेशन है, स्पेशल क्लोथिंग है, हर चीज आपको नीचे से लेके जानी है
0: जी।
2: और नीचे से ले जाने के लिए कोई आपके पास रोड्स नहीं है वहाँ पे
0: जी,
2: किसी तरह से ट्रैक्स नहीं है ना, तो वहाँ खच्चर जाते हैं ना वहाँ पे कोई गाड़ी जाती है, तो राशन सप्लाई करने का वहाँ पे सबसे बड़ा जो साधन होता है एक तो NNFO

0: वो जो है सप्लाई मेंटेन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा। बड़ा योगदान रहता है। और वहां पे जो राशन्स हैं, मैं उसके बारे में आगे भी जिक्र करूंगा, ठीक है। एक आपको अलग तरह से राशन, स्पेशल राशन्स भी चाहिए होते हैं, अच्छा। जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। एंड केरोसिन जो है, जैसे एक हम बात करें, वहाँ पे आप एक बार राशन खाए, मतलब खाना खाए वगैरह रह सकते हैं, लेकिन केरोसिन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको आग नहीं जली हुई है, आपके बुखारी नहीं चली है, तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि आप के लिए मुश्किल हो जाता है। सो लॉजिस्टिक इज अ नाइटमेयर देयर। और इसके लिए बहुत ही, मतलब बहुत ही एडवांस और बहुत डिटेल प्लानिंग करनी होती है,
1: अच्छा।
0: कि एक यूनिट जारी है तो उसके लिए वहां पे उसको कितना राशन चाहिए होगा, उस दौरान मतलब कितने दिन जो है वेदर पैक रहेगा, ये भी एक हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि विंटर्स में ज्यादा पैक रहता है, तो उसमें हमें कितने दिन मिलेंगे वहां पे राशन डंप करने के लिए, हर पोस्ट पे पहुंचाने के लिए, मतलब जो है हमें कितने पोर्टर्स चाहिए हैं,
1: अच्छा।
0: किस तरह से मतलब जो है लेके जा पाएंगे, एंड इट्स अ मेजर मेजर एफर्ट्स जो
1: हाँ।
0: मतलब अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल पोस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और दिन रात जो है इसके लिए एक एक मतलब जो है कार्रवाई चलती रहती है। और इसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि IAF प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेजर रोल, एंड हैप्टस ऑफ आर्मी एविएशन दे आल्सो प्ले मेजर रोल इन दिस, है ना।
1: सर अब एक प्रश्न यहाँ पर मन में यही आता है कि ऊंचाई तो सियाचिन में भी है और दूसरी जगहों पर भी उतनी ही ऊंचाई है, तो सियाचिन की ऊंचाई में, दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई में आप क्या अंतर पाते हैं, अपने काम में क्या अंतर पाते हैं वहाँ पर?
0: सियाचिन थर्ड पोल जिसको बोलते हैं ना
1: जी,
0: नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद जो है थर्ड पोल बोला जाता है उसको। जब आप वहां जाते हैं, देखिए बाकी जगह पे एक फर्क ये होता है कि आप कहीं जाते हैं, जैसे बाकी लोकेशंस पे मैंने देखा कि आपको थोड़ा इनहैबिटेशन दिखता है, लोग दिखते हैं आसपास, जो है जानवर दिखते हैं, जो है कहीं कहीं घास वगैरह भी दिखती है, कहीं एक वक्त तक तो आपको ट्री लाइन दिखती है। जब आप सियाचिन के एरिया में एंटर करते हैं, इस एरिया में वहां आपको सिवाय बर्फ के कुछ नहीं दिखता है। जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक नॉर्मल जो वातावरण को देखता है, जो नॉर्मल चीजों को मतलब एक्सेप्टेड होता है कि हमें पेड़ दिखेंगे, हमें चिड़िया दिखेगी, हमें एक आवाज दिखेगी, हमें कुत्ता भौंकता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ रहता है। देयर इज अ एब्सोल्यूट साइलेंस, वहां कुछ नहीं, वहां आपको बर्फ दिख रही होती है चारों तरफ। और उसमें जो है वहां पे जो ब्लिजर्ड्स आते हैं, मतलब स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली इट इज फॉर 15 डेज ऑल्सो, मतलब जो है पैक रहता है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं गया था, जो मैं स्नो हट थी उसमें मैं सीधा एंटर किया था, एंड 20 दिन के बाद वो है 16 से 18 फीट नीचे बर्फ जा चुकी थी जो है। तो आप मतलब ये देखिए, एंड ऐसे वहां पे जिस तरह से मतलब पियर्स, मतलब इतने ज्यादा तेज तूफान मैंने कहीं और नहीं देखे थे। तो इसका क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। एंड सेकंड थिंग इज वहां पे रेरिफाइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो बॉडी फंक्शनिंग जो है उसपे बहुत फर्क पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली। इट्स एब्सोल्यूट,
1: आप शारीरिक रूप से तो इसको चैलेंज की तरह लेते ही हो, मानसिक रूप से भी।
0: हाँ, मानसिक रूप से भी। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम जस्ट माउंटेनियरिंग से अगर कंपेयर भी करें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि माउंटेनियरिंग कम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वो भी, लेकिन माउंटेनियरिंग में आप एक जाते हैं, उस पहली बात तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप वहां रह रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक टास्क है, और उसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महीने रह रहे हैं। 3 months is considered as the maximum a body can, मतलब sustain.
1: अधिकतम वो कितने समय तक वहाँ रह सकता है?
0: हम लोग का ना, जैसे ग्रुप जाता है तो हम 3 महीने के लिए जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, जी। 3 महीने के लिए जाते हैं, 3 महीने के बाद जो है वापस आते हैं। उसके बाद बॉडी के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जाने से पहले भी, अब जैसे इस इलाके में जो है आपको स्पेशली एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है, एंड आपके लिए उसके लिए आपका जो है मेडिकल रोज होते हैं, फिर आपको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर सियाचिन बैटल स्कूल है जिसमें कि हमें बर्फ के ऊपर चलना, क्रेवेसिस क्रॉस करना, ठीक है, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, आइस वॉल जो होती है 90 डिग्री की आइस वॉल होती है उसको कैसे चढ़ना है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं जिसमें कीले लगी होती है पैरों में, वो डाल के चलना होता है। फिर जो हमारे पास हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो सेट्स हैं, बाकी चीजें हैं, तो वो कैसे उसको मेंटेन करना है, टेलीफोन सेट, क्योंकि जब इस टेम्परेचर पे उसमें भी जो है मतलब काफी प्रॉब्लम आती है, काफी उनकी भी मतलब जो है एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी एक स्पेशल केयर आपको करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है सियाचिन को अलग थोड़ा बनाती हैं, ठीक है,
1: वहां पर जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है,
0: बिल्कुल है। एक मतलब बहुत छोटी सी चीज होती है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको जो है प्रॉपर रखना है। अच्छा, सियाचिन में क्या था, यू एंटर इनसाइड देन यू आर कमिंग बैक ओनली आफ्टर मतलब 3 months 4 months जो है आप वापस आ रहे हैं, तो एक जो मेंटली भी जो होता है लोगों के ऊपर एक मेंटल इम्पैक्ट आता है, आइसोलेशन का इम्पैक्ट आता है, तो उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कैसे बिजी रखते हैं, देन जो वहाँ के डिजीजेस वगैरह रहती हैं जैसे चिल ब्लाइंस हो गया, फ्रॉस्ट बाइट्स हो गई हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, अब जैसे आपने स्नो गॉगल पहना हुआ है, आपने सपोज उसको निकाल दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इमीडिएटली जो है आपको स्नो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है, तो वो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं उसके, उस इलाके में मेंटली आपको कैसे फिट रहना है, आइसोलेशन से कैसे डील करना है, ठीक है, तो एक छोटे से टेंट में जो है 10 लोग रह रहे हैं, अगर सब कुछ मतलब कई बार जो है मतलब इट इज अ चैलेंज, तो ये चीजें जो होती हैं ये मुझे लगता है बाकी से थोड़ा इनको
1: अलग
0: है, एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस आई हैड फाउंड देयर जी। बट मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने कभी अपने किसी जवान को उदास नहीं देखा था, कभी मैंने किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं देखा
1: जी। सर, ये तो जवानों का जज्बा है जो उन्हें वहां पर हमेशा मुस्तैद रखता है, लेकिन एक बात तो ये सोचने में आती है सर कि इनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारी क्या करते हैं या क्या प्रोविजंस होते हैं कि ये हमेशा अपना मोराल जो है उनका बना रहे।
0: लीडरशिप तो है ही जी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है इसमें, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान रखती है, आर्म फोर्सेस का बहुत ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे जो जवान जाते हैं उनको स्पेशल राशन ऑथराइज होते हैं
1: जी।
0: स्पेशल राशन में जो है अगर आप वो देखेंगे, राशन देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, हर तरह के जूसेस होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, रसगुल्ले के टिन्स जो हल्दीराम के आते हैं, गुलाब जामुन टिन्स हैं, नमकीन्स हैं, ठीक है, देन स्पेशली डेवलप्ड रेडी टू ईट मील्स जो होते हैं वो होते हैं, एंड मतलब वेरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, चिकन है, ऐसे करके काफी जो जिस तरह से ट्रिप जा रहे होते हैं उस तरह से उनको राशन दिया जाता है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि जो वेजिटेरियन ट्रिप्स हैं उनके लिए वेजिटेरियन काइंड ऑफ राशन दिया जाए, जो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन राशन दिया जाए, तो स्पेशल राशन ऑथराइज होता है वहां पे जो है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है जिसके बगैर वहां पे मतलब रहना बहुत मुश्किल है, तो वो इश्यू होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मानते हैं, तो उसको बहुत डेवलप किया गया है, एंड बहुत ही बेसिक से लेके आज बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक जवान जो है अपने घर में बात कर पा रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि जो अपने घर में वो बात कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी प्राइम एंड वेरी गुड देयर, इन द सेंस डॉक्टर्स बहुत होते हैं हर मतलब जो है कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो है आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड हर जवान का ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, पोस्ट पे भी जो होते हैं कि उनको किसी को बुखार तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अभी एकोमोडेशन जो है लाइक स्नो हट्स जो है बनाई जाती हैं वहाँ पे, एंड आर्किटेक्ट टेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं रहने के लिए। ऑफकोर्स इन सबके बावजूद मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वहाँ लाइट नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपके पास अब मनोरंजन का साधन रेडियो ही है, तो मतलब है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत फैसिलिटीज अच्छी, मतलब निरंतर एक प्रयास रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे स्पेशली जो ग्लेशियर वाला एरिया है इसमें स्नो स्कूटर्स इशू करे होते हैं, एंड फिर जब जो जवान वहां जाते हैं, जो ऑफिसर्स मतलब जो भी जाते हैं उनको वहां स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं जी, उसका प्रोविजन होता है, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, एंड आफ्टर यू सर्व देयर यू गेट अ सियाचिन मेडल आल्सो, ठीक है, which is an honor. ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे एक तरह से these are morale boosting factors and which are taken care of, है ना. And there are a lot of challenges at glacier. ठीक है, even मैं बता रहा हूँ, एक moment होता है ना जब जैसे चलना भी होता है ना वहाँ पे. अगर fresh snowfall हुआ तो आप ये देखिए कि आप एक कदम करते हैं और नीचे पूरा आप कमर तक अंदर जा चुके होते हैं. कई कई बार जो है मतलब 100-100 मीटर क्रॉस करने में एक घंटे से ऊपर लग जाता है. एंड आपको नहीं मालूम है कहाँ पे क्रवास खुलने वाला है, कहाँ एवलांच आने वाला है. स्नो ब्लेजर्स में जब आप बाहर निकलते हैं स्नो ब्लेजर्स के बाद, तो मैंने पूरा टेरेन चेंज होता हुआ देखा है. जहाँ पे मतलब टीले थे बर्फ के, वहाँ वो पूरे गायब हो गए. एंड वहाँ पता चलता है कि नया क्रवास खुल गया है.
1: तो सीन भी चेंज हो जाता है,
0: सीन चेंज होता है. पूरे कम्युनिकेशन वायर जो है आपके जो है सारे के सारे स्नैप हो जाते हैं. उसको आप इमीडिएटली फिर एस्टेब्लिश करते हो. इट्स अ हरकुलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है. लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म करना उस सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन में, आर्कटिक कंडीशन में, इट्स अ मेजर चैलेंज विच they do it very sincerely, है ना. Then body efficiency जो है बहुत कम हो जाती है. आपकी जो working efficiency है because of climatic condition. See, अब body normal body वहाँ पे जो है जैसे अगर जिसको 2000 calories per day चाहिए, उसको वहाँ पे 4000 calories चाहिए. अब इतना consume करना भी हमारी habit में नहीं होता. मैं आपको बोलूँ कि आप 15 रोटी खा लीजिए आज, तो नहीं खा सकते, नहीं खा पाते. तो ये इस कारण से क्या होता है, बॉडी एफिशिएंसी कम होती है. देन वर्किंग जो है आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट, बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट है, बहुत कंजेस्टेड पोस्ट है. तो उसमें जब आपको रखा जाता है तो भी इतने लंबे टाइम के लिए 90 दिन बहुत होते हैं वहाँ पे, आपको समझना आता है. तो
1: सियाचिन में जो पोस्टिंग होती है उसके लिए क्या कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, किस तरह से जवान सिलेक्ट होते हैं, या उनको किस तरह से वहाँ के लिए किस तरह से चुना जाता है?
0: देखिए, इन्फेंट्री बटालियंस का तो रूटीन होता है, मतलब टेन्योर होता है. जब बटालियंस जा रही होती हैं तो जिस रेजिमेंट की वो बटालियन होती है, जैसे सपोज मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, तो मेरी अगर हमारे एक बटालियन जा रही है तो उसमें वॉलंटियर करके जा सकते हैं.
1: अच्छा,
0: जो है उसी तरह से बाकी भी जो है इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स हो गए, आर्टिलरीज हो गए, तो उनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स आती हैं.
1: अच्छा,
0: एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉलेंटियर ऑल्सो.
1: यानी आप भी चुन सकते हैं,
0: आप चुन सकते हैं जाने के लिए. ठीक है, एंड बहुत लोग हैं जो वॉलेंटियर करके जाते हैं वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, इतने कष्ट के बावजूद जो है उस चैलेंज को उठाना का एक और रहता है, हौसला रहता है.
1: भारतीय सैनिकों की पहचान है.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई मस्ट से कि दिस प्लेस इट एक्चुअली मतलब गिव्स यू अ मेजर चैलेंज इन योर सर्विस. ठीक है, मोर देन 1000 soldiers had lost their lives in glacier. ठीक है, this one of the highest casualty rates. अभी तक जो है इतने मतलब officer JCO जवान शहीद हुए हैं इस धरती पे जो है सियाचिन में. और इसी कारण जो है बहुत सारे जो मतलब सोल्जर्स हैं, हमने जैसे बाना सिंह साहब का जिक्र किया था, परमवीर चक्र जिनको मिला है, और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर्स हैं, जेसीओ सुवास हैं, जिनको गैलेंट्री एक्शन के लिए जो सम्मानित किया गया है. और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो शहीद हुए हैं और शहीद होने के बाद उनको जो है सम्मान मिला है. तो ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ का सियाचिन जैसी जगह का, इट शोकेसेस द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, सिंसियरिटी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी ऑफ द आर्म फोर्सेस. ठीक है, एंड यहाँ लड़के हमने पूरी दुनिया को जिता दिया था कि इस लोकेशन पे, इस हाइट में, इस एडवर्स कंडीशन में भी जो देश है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं.
1: देश सर्वोपरि है,
0: देश सर्वोपरि. फॉर अ सोल्जर द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवर.
1: तो श्रोताओं, ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए इस बात का सबूत है कि जब बात इस देश की मिट्टी की आती है तो हमारी सेना का हर सैनिक कुदरत के सबसे भयानक रूप से भी टकराने का दम रखता है. ये जीत हथियारों की नहीं, हमारे जवानों के फौलादी हौसलों की है, जिसे दुनिया की कोई भी ठंड जमा नहीं सकती. इसके साथ ही सर, आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं. आपने आज स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू प्रभा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं.
1: जय हिंद सर. तो ये था श्रोताओं हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी सेना हमारा गर्व, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। एक अंतराल के बाद हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम लेकर, बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब आपके सम्मुख दो निर्गुणी पद सुनाती हूँ। पहला पद गोरखनाथ जी का है। दोनों ही पद ऐसे हैं जिन्हें मालवा

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
0: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
0: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
0: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
0: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
0: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
0: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
0: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
0: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है,
2: इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
2: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
2: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयां क्यों हैं?
2: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयां अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुंचाए जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, आखिर BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
2: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
2: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या दादू, आप भी ना, आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
2: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
2: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
2: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
2: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
2: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
2: वो रेडियो तरंगे भेजता है, ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है, लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
2: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
2: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
2: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
2: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
2: नहीं नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे?
2: जैसे यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग? यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
2: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
2: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं?
2: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
2: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
1: और आगे?
2: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
1: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
2: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
2: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
2: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
2: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
2: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
2: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है।
2: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
2: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
2: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
2: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
2: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
2: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
2: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
2: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
2: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
2: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
2: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
2: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
2: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है।
2: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
2: हाँ हाँ, इसे संयुक्त उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
2: देखो बेटा, BEL ने GE हेल्थ केयर के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का कार्य किया।
1: मतलब रक्षा क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान।
2: हाँ, वही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
1: उसमें BEL का क्या योगदान था?
2: उसमें बेटा BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
1: अच्छा। क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
2: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
2: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
2: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
2: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
2: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
2: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
2: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
2: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
2: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
2: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
2: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
2: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
3: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
2: नमस्कार
3: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
2: दीपक नेमा,
3: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गया था?
1: क्या बताऊँ यार तुझे, पता तो है हमारी तरफ सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है।
0: काम चल रहा है तो क्या हुआ?
1: अरे वही तो बता रहा हूँ, सड़क को चौड़ा करने के लिए सामुदायिक भवन परिसर का एक कोना तोड़ा गया। बस इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया, पूरा रास्ता जाम हो गया, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ।
0: हाँ, सामुदायिक मामलों में दखल देने से हंगामा होता ही है।
1: पर वहाँ हंगामा कहा था, वहाँ तो पूरी राजनीति चल रही थी।
0: अक्सर ऐसे मामलों में बस यही होता है।
2: तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जब तक तुम्हारी चाय आए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ।
1: कैसा किस्सा गजबी काका?
2: एक क्रांतिकार समाज सेवक केशव चंद्र सेन का किस्सा।
1: केशव चंद्र सेन का किस्सा?
2: हाँ, उस रोज नौजवानों की मंडली में भी धर्म को लेकर ऐसी ही बहस छिड़ गई थी।
1: अच्छा।
2: और बातों के दौर में धर्म तो एक तरफ छूट गया, आपस की तूतू मैमे शुरू हो गई। केशव चंद काफी देर तक उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते रहे, पर फिर उनसे रहा नहीं गया।
3: दोस्तों शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग धर्म चर्चा छोड़कर आपस में लड़ाई झगड़े पर उतर आए हो।
4: केशव, तुम कहना क्या चाहते हो?
5: क्या मतलब है आपका?
3: मतलब ये कि धर्म की चर्चा करते करते तुम धर्म को ही भूल गए। अरे तुम सबने धर्म को एक एक व्यक्ति की वस्तु बना दिया, ये भूल गए कि धर्म एक व्यक्ति की नहीं मनुष्य मात्र की वस्तु है। अच्छा बताओ, तुम धर्म का उद्देश्य क्या मानते हो?
5: यही कि सभी मनुष्यों का भला हो, उनकी आत्मा शुद्ध हो, वे सभी प्राणियों से प्रेम करें।
3: तो मुख्य चीज आत्मा की शुद्धि हुई ना।
4: हाँ।
3: यानी जिन उपायों से आत्मा शुद्ध हो वो सभी धर्म के अंग हैं। लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, फिर जिसे जो रास्ता पसंद आए वो उसे अपनाए। इससे अंतर क्या पड़ता है और इसमें गलत क्या है? गलत है ये आशा करना कि सब लोग एक ही रास्ता अपनाएं, ये अधर्म है। अधर्म, इसी अधर्म के चलते तुम लोग धर्म का मर्म भूल गए और आपस में झगड़ने लगे हो।
5: हाँ भाई, केशव सही कहता है।
6: हाँ, हम मानते हैं कि जो जोश में हम मूल मुद्दे से भटक गए, हम शर्मिंदा हैं।
3: अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, भूल को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं अब चलूंगा, मुझे समाज की मीटिंग में जाना है। मित्रों, आप लोग अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं, मैं तो चलता हूँ। नमस्कार।
5: नमस्कार। नमस्कार।
7: गए? अब बताओ, घंटों का विवाद मिनट भर में निपटा देने वाला ये तेजस्वी युवक कौन है?
5: अरे तुम इन्हें नहीं जानते? हाँ, तुम जानोगे भी तो कैसे,

0: मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पिता तो विद्वान थे ही, इसने भी बचपन से ही अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दी थी। पढ़ने लिखने में जितना तेज था, आचार व्यवहार में उतना ही शालीन।
1: पुली बाबा, तुम तो ऐसे बात करता है जैसे उसका गार्जियन हो।
0: तो उम्र में उससे 2 साल बड़ा ही हूँ, मैं 19 का है और मैं 21 का। ये 19 नवंबर 1838 को पैदा हुआ था और मैं 21 सितंबर 1836 को।
1: लो भाई, ये तो केशव का बोर्डा बन गया।
2: अरे छोड़िए ये बातें, मुझे ये बताइए कि ये जाते जाते किस समाज की बात कह रहे थे? मुझे समाज की मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ, कह नहीं रहते?
1: हाँ कहत रहे थे, पर इसका उत्तर तुम्हें उसके बोर्डा ही देंगे, बताओ भाई।
0: उसके बारे में तुमसे अधिक मैं जानता हूँ। समाज यानी ब्रह्म समाज, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रह्म समाज का उसे सक्रिय सदस्य बनाया गया है। ब्रह्म समाज के बारे में तो जानते हो ना?
2: ब्रह्म समाज
0: नहीं तो बता ही देता हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1833 में की थी।
2: अच्छा।
0: और इसका उद्देश्य था भारतवासियों की आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आजकल ईश्वर चंद विद्यासागर इसके मंत्री पद पर आसीन है और महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता महर्षि देवेंद्र कुमार ठाकुर इस समाज के सर्व प्रमुख कार्यकर्ता हैं। और कुछ?
1: अरे तो ये भी बता दो कि वे ब्रह्म समाज के सदस्य कैसे बने? क्यों भाई सोमेंद्र, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे? इन्हें तो ये भी पता होगा।
0: अरे हाँ हाँ मुझे पता है, सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था इसके बारे में। हुआ यह है कि पिछले दिनों रामनारायण बसु की बहुचर्चित पुस्तक ब्रह्मवाद क्या है उसके हाथ लग गई। इस पुस्तक ने उसे बहुत प्रभावित किया। मुझसे मिला तो बोला,
3: क्या तुमने ये पुस्तक ब्रह्मवाद क्या है पढ़ी है?
0: नहीं तो?
3: जरूर पढ़ना, अद्भुत पुस्तक है। ब्रह्मवाद को इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है कि कहीं शंका शेष ही नहीं रहती। मैंने तो निर्णय कर लिया है, मैं ब्रह्म समाज का सदस्य बनने जा रहा हूं।
0: बस, और वह 19 वर्ष की इस उम्र में ही ब्रह्म समाज का सक्रिय सदस्य बन गया और पूरे जोर शोर के साथ समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में जुट गया।
4: लो भैया, तुम्हारी चाय आ गई।
5: लाओ लाओ लाओ गजबी काका। अच्छा आगे क्या हुआ गजबी काका?
4: वो कहते हैं ना बेटा, कर्मठ और योग्य आदमी की सभी जगह पूछ होती है।
5: हाँ ये बात तो है।
4: सो शीघ्र ही लोग केशव चंद से प्रभावित हो उठे और वे ब्रह्म समाज के एक प्रमुख कार्यकर्ता माने जाने लगे। इतना ही नहीं, 2 वर्ष बाद ही सन 1859 में उन्हें वयोवृद्ध महर्षि देवेंद्र कुमार के साथ समाज का संयुक्त मंत्री चुन लिया गया।
5: अच्छा,
4: 21 वर्ष के युवक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
5: सचमुच गजबी काका, ये तो बहुत बड़ी विलक्षण बात थी।
4: संयुक्त सचिव बनते ही वे महर्षि के साथ चीन गए और वहां समाज का प्रचार किया, कई पुस्तकें लिखी।
5: अच्छा।
4: इनमें से युवा बंगाल ये तुम्हारे लिए है पुस्तक ने तो जैसे लोगों पर जादू जैसा असर कर दिया। समाज के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, पर तभी एक घटना घटी। नियति जैसे उनसे एक महान कार्य कराना चाहती थी। हुआ ये कि ब्रह्म समाज के मंत्री ईश्वरचंद विद्यासागर का स्वास्थ्य बिगड़ा।
5: अच्छा।
4: तो उन्होंने समाज से अलग होने का निर्णय किया और अपनी जगह केशव चंद्र को मंत्री बनाने की घोषणा कर दी।
6: केशव बुढ़ापे के कारण अस्वस्थता ने मुझे निष्क्रिय बना दिया है। मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा कर्मठ कार्यकर्ता समाज का मंत्री बने। मैं समाज से अलग तो हो रहा हूं, पर अभी भी मेरा एक काम अधूरा रह गया है केशव, जिसका दायित्व मैं तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूं।
3: जी कौन सा दायित्व महर्षि?
6: केशव, विधवाओं की बुरी हालत मुझे अत्यंत परेशान किए हुए है। तुम्हें मैं उनकी हालत सुधारने के लिए उनके फिर से विवाह का माहौल तैयार करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं।
3: जी महर्षि, इस विषय ने मुझे भी व्यथित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी शक्ति आपके द्वारा दिए दायित्व को निभाने में लगा दूंगा। ईश्वर अवश्य में इस सत्कार्य को सफल बनाने में सहायता करेगा।
6: केशव, मुझे पूर्ण भरोसा
3: जी,
6: तुम अपने अभियान में जरूर सफल होगे।
3: जी विद्यासागर जी,
6: ईश्वर ईश्वर तुम्हें सफलता दिलाएगा।
3: जी जी, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा जी।
6: हाँ केशव, तुम्हें ये कार्य करना ही है।
3: जी जी,
6: नहीं तो विधवाओं की हाय इस भारत भूमि को कभी पनपने नहीं देगी केशव।
3: जी विद्यासागर जी, आप आराम कीजिए, आराम कीजिए।
7: फिर क्या हुआ काका?
4: केशव चंद सेन ने भी ये दायित्व एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
5: अच्छा।
4: वे विधवा विवाह के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करने लगे, जगह जगह भाषण, विधवा विवाह के समर्थन में नाटक खेले जाने लगे। लोगों में इसका अच्छा असर दिखाई देने लगा। लोग हिम्मत करके विधवाओं के फिर से विवाह के लिए आगे आने लगे।
5: अच्छा।
4: विधवा विवाह के प्रकरणों में बढ़ोतरी होने लगी और इसके साथ ही रूढ़िवादियों द्वारा केशव चंद्र का विरोध भी तेज से तेज होता चला गया।
1: विधवा विवाह धर्म विरुद्ध है, यह एक बड़ा पाप है, यह पाप हम नहीं चलने देंगे।
8: केशव चंद्र पागल हो गए हैं, उन्होंने समाज को रसातल में पहुंचाने का प्रण ले रखा है।
1: हाँ।
8: उनका पागलपन हम नहीं चलने देंगे।
1: बिल्कुल नहीं चलने।
8: केशव चंद्र का विरोध बहिष्कार किया जाएगा।
9: केशव चंद्र आ रहे हैं, केशव चंद्र आ रहे हैं, वे आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कृपया शांत हो जाएं।
10: हम उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते।
11: शहर में अनैतिकता का प्रसार नहीं होने देंगे,
12: नहीं होने देंगे,
11: नहीं होने देंगे,
12: धर्म विरोधी कार्य नहीं होने देंगे,
13: नहीं होने देंगे। विधवा विवाह
14: मुर्दाबाद,
15: मुर्दाबाद।
13: विधवा विवाह
15: मुर्दाबाद,
13: मुर्दाबाद।
15: विधवा विवाह
13: मुर्दाबाद,
15: मुर्दाबाद।
16: धर्म विरोधी कार्य बंद हो,
17: बंद हो,
18: बंद हो।
19: केशव चंद्र
20: मुर्दाबाद,
19: केशव चंद्र
20: मुर्दाबाद।
9: भाइयों भाइयों, केशव जी की बात भी सुने।
21: केशव चंद
22: मुर्दाबाद,
21: अधम प्रचारक,
22: हाय
21: हाय, अधम प्रचारक,
22: हाय
21: हाय। अरे भाई,
22: तो
21: कहता हूं इसका मुंह काला करो, काला करो।
5: फिर क्या हुआ गजबी काका?
4: केशव चंद्र का संकल्प दृढ़ था। तीव्र विरोध के बावजूद वे और उनके समर्थक विधवा विवाह के अभियान में जुटे रहे। विधवा विवाह के साथ ही उन्होंने महसूस किया कि स्त्रियों की बुरी हालत के लिए बाल विवाह भी कम जिम्मेदार नहीं है।
23: मित्रों, ब्रह्म समाज की यह विशेष मीटिंग एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में, विशेषकर गांवों में, दो दो तीन तीन वर्ष की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने का मौका ही नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप बहुतेरी बच्चियां 8-9 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते विधवा हो जाती हैं। फिर उन्हें जीवन भर तपस्विनी की तरह रहना पड़ता है, उन्हें भारी प्रताड़ना सहनी पड़ती है।
24: मंत्री महोदय सही कह रहे हैं, हम सब जानते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो उन्हें जिंदा भी नहीं रहने दिया जाता था, जबरदस्ती अपने मृत पति के साथ जला दिया जाता था। अब भी कई बार सती प्रथा की छुटपुट घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं।
23: इसीलिए मित्रों, इसीलिए समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम विधवा विवाह का प्रचार करने के साथ साथ बाल विवाह का विरोध करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये शपथ लेगा कि वो कम उम्र की अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेगा और अपने समाज में होने वाले बाल विवाह का पूरी ताकत से विरोध करेगा।
1: मित्रों, इस हर्ष ध्वनि से स्पष्ट है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति बाल विवाह के विरोध में हैं। पर मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले ही विधवा विवाह को समर्थन देने के अभियान के कारण ब्रह्म समाज की कटु आलोचना हो रही है। ऐसे में बाल विवाह विरोध का नया मुद्दा उठाकर क्या हम अपनी आलोचना अपने विरोध को और हवा नहीं देंगे?
23: बिल्कुल ठीक, आपका डर निरर्थक नहीं है, पर हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया काम किया जाता है, समाज में सुधार का प्रयत्न किया जाता है, यथास्थिति वादियों द्वारा उसका विरोध होता ही है। धर्म, नैतिकता आदि सभी मुद्दों का उपयोग किया जाता है, पर हमें इससे भयभीत नहीं होना है। मित्रों, आप याद करें, सती प्रथा का जब विरोध शुरू हुआ था तब ऐसा ही हंगामा मचा था। लोगों ने इस अभियान को समाप्त करने के सभी प्रयत्न किए थे, पर हमारे नेताओं ने, हमारे समाज चिंतकों ने अपने विरोध की चिंता न करते हुए अपने प्रयत्न जारी रखे। उसी साहस और प्रण का फल है कि आज सती प्रथा की कुप्रथा का अंत हो गया है, बल्कि इसकी रोक का कानून भी बन रहा है। आज भी यही हो रहा है। यदि हम मानते हैं कि बाल विवाह गलत है, यदि हम ये महसूस करते हैं कि विधवा विवाह सही है, तो हमें अपने विरोधियों की परवाह न करते हुए अपने समाज सुधारक इन अभियानों से दृढ़ता के साथ जुड़ते रहना है।
4: केशव चंद्र अपने समाज सुधार के अभियान में पूरी निष्ठा के साथ जुटे रहे। उनका विरोध भी होता रहा, पर केशव चंद्र अडिग रहे। उन्हें लगा इस विरोध का कारण है अशिक्षा, इसलिए भारतवासी उचित अनुचित का बिना विचार किए अंधों की तरह पुरानी लीक पर चलना पसंद करते हैं। इसे दूर करने के लिए उन्होंने एक और अभियान छेड़ा, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित करने का।
5: फिर क्या हुआ? क्या उनके इस कदम का विरोध नहीं हुआ?
4: विरोध की उन्होंने कब परवाह की?
5: हाँ, ये बात भी है।
4: उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह भारतवासियों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रिटिश राज्य के नाम एक अपील नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की, भाषण दिए और इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी अखबार भी निकाला। इस सब का असर ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। स्कूल खोले जाने लगे, पर विरोध जैसे उनकी नियति बन गई थी।
5: इसके बाद क्या हुआ गजबी काका?
4: इसके बाद केशव चंद्र ने अपने विरोधियों को अपने विरोध का एक और मुद्दा दे दिया।
5: क्या
4: बात? सन 1863 की ही है। इस बार की ब्रह्म समाज की मीटिंग में केशव चंद्र ने एक नया मिशन उछाला।
23: मित्रों, आप लोगों ने यह महसूस किया होगा, हमारे समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय है, उन्हें अत्यंत तुच्छ समझा जाता है। हमारे घरों में भी केवल पुरुषों की ही चलती है, स्त्रियों को तनिक भी नहीं पूछा जाता है। इनकी ये स्थिति बनाए रखने के लिए इनकी पढ़ाई लिखाई में भी बंदिश लगाई हुई है। सही तो यह है कि उन्हें पुरुषों के पैर की जूती समझा जाता है, पैर की जूती। हमें उनके उत्थान की ओर ध्यान देना होगा।
10: मंत्री महोदय शायद ये भूल गए हैं कि ऐसा कहकर वे हमारे पारिवारिक जीवन में सेंध लगा रहे हैं।
23: नहीं नहीं नहीं, पारिवारिक जीवन में सेंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने की बात की जा रही है। अरे जरा सोचिए जरा, आज समाज की गाड़ी का एक पहिया बेकार पड़ा है, समाज एक पहिए की गाड़ी बना हुआ है। क्या आप नहीं चाहते दूसरा पहिया भी सही हो, उसकी मरम्मत करके कारगर बनाया जाए उसे?
10: अरे ये हमारे घर का मामला है, इसमें हस्तक्षेप का अधिकार आपको किसने दिया? हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे, समझा?
2: मित्रों सुनो मेरी बात। मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना
24: प्रस्ताव को शुरू में ही नकार देना ठीक नहीं है। मेरी समझ से मंत्री महोदय ने समाज की बेहतरी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
2: हाँ हाँ, मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाना ही चाहिए।
23: शांत हो जाइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों के सही विकास से ही समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। पति पत्नी के बीच छोटे बड़े का सवाल उठाना गलत है। अरे जरा सोचें, यदि माँ दबी कुचली हालत में रहेगी तो क्या बच्चे का कभी सही ढंग से विकास हो सकेगा? इसलिए मेरे विचार से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए अधिक से अधिक कन्या विद्यालय खोलने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़कियों को शिक्षित बनाने और एक स्त्रियों की पत्रिका वामा बोधनी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
1: जाहिर है मंत्री महोदय स्त्री उद्धार, स्त्री उत्थान की बात करके घर घर में महाभारत प्रारंभ कराना चाहते हैं। हम इसमें सहभागी नहीं बनेंगे।
14: मेरा कहना है, समाज अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हम लगातार अपनी सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार करते जा रहे हैं। पहले विधवा विवाह का मुद्दा, फिर बालिका विवाह का मुद्दा, और अब स्त्री उत्थान का मुद्दा।
23: एक मिनट, मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, ये सभी मुद्दे सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार न होकर हमारे अंधविश्वासों, हमारी कुप्रथाओं पर प्रहार रहे हैं। संभवतः हमारे मित्र समाज में पुरुषों के वर्चस्व के लिए स्त्री उत्थान से भविष्य में खतरे की संभावना से चिंतित हो उठे हैं ना?
2: मंत्री महोदय, आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, हम इसे सहन नहीं करेंगे।
1: मैं सदन में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि क्या समाज केवल एक व्यक्ति की सनक से संचालित होगा?
24: ये मंत्री महोदय की निष्ठा पर सीधा प्रहार है, हम इसे सहन नहीं करेंगे।
1: तो क्या हम मंत्री जी के उल्टे सीधे निर्णयों को मानते रहेंगे?
24: मंत्री जी का अपमान करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे।
7: फिर क्या हुआ गजबे काका?
4: ब्रह्म समाज में ही अपने विरोध को देखकर क्षुब्ध होकर केशव चंद्र ने अपने आप को समाज से अलग कर लिया।
5: यानी उनके चलाए गए सुधार के सभी अभियान समाप्त हो गए?
4: नहीं, हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था।
5: अच्छा।
4: ब्रह्म समाज से अलग होकर 1867 में उन्होंने एक नई संस्था शुरू की, भारतीय ब्रह्म समाज। अगले वर्ष 24 जनवरी 1868 को उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज मंदिर की आधारशिला रखते हुए कहा।
23: मित्रों, ईश्वर न केवल हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का और ना ईसाइयों का, वो तो सबका है और सब उसके हैं। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, सब उसके हैं। इसीलिए सब बराबर हैं। जो कोई उसे पाना चाहेगा जरूर पाएगा, पर दूसरों को नीचा गिराकर नहीं, अपने को ऊंचा उठाकर। इस मंदिर के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
4: पूरी जिंदगी मृत्यु पर्यंत वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। 1870 में इंग्लैंड की यात्रा की, वहां से भारत का आध्यात्मिक राजदूत का खिताब लेकर लौटे। रेवरेंड डीन, डॉक्टर मार्टिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रोफेसर मैक्स मुलर, ग्रांड डफ आदि सब उनके प्रशंसक बन गए।
5: अच्छा।
4: इंग्लैंड से लौटते ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन संस्था बनाई। सभी जातियों और धर्मों के लोग इसके सदस्य बने। इसके अंतर्गत अनेक काम हुए। सुलभ समाचार, मदन गरल नामक पत्र निकाले गए, स्त्रियों के लिए नॉर्मल स्कूल, धर्मार्थ शाखा की स्थापना, एक औद्योगिक स्कूल और गरीबों के लिए एक प्रारंभिक स्कूल और कलकत्ता स्कूल प्रारंभ किए गए। इतना ही नहीं, जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने भारत आश्रम की स्थापना की।
5: अरे वाह!
4: 8 जनवरी 1883 को वो कर्मयोगी, समाज सुधारक 46 वर्ष की अल्पायु में संसार से विदा हो गया।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विस्मयजनक लगता है कि स्वामी विवेकानंद एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाएं आरंभ की थी, उनमें से कई अपनी शताब्दी मनाने के बाद आज भी अबाध गति से चल रही हैं।
1: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है, किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। किंतु उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का पत्रकारिता का पक्ष प्रायः अज्ञात ही है। कई लोगों को शायद स्वामी जी को एक पत्रकार के रूप में चिन्हित करना हास्यास्पद भी लगे, परंतु ये एक सच्चाई है कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही कम से कम 6 पत्रिकाएं आरंभ की थी तथा कई अन्य पत्रिकाओं के भी प्रकाशन में सहायता एवं प्रेरणा प्रदान की थी।
0: तरुणावस्था से ही स्वामी जी की पत्रकारिता में रुचि थी। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में उन्होंने श्री राम कृष्ण के गृही शिष्य उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय को एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमेरिका जाने के बाद उनमें पत्रिकाओं के प्रवर्तन का विचार और भी प्रबल हुआ था। अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि के बाद पूरे भारत वर्ष में जो उत्साह की विशाल तरंग उठी थी, स्वामी जी उसका उपयोग श्री राम कृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के प्रचार में करना चाहते थे, बिना किसी समझौते के सत्य का प्रचार। उनके अपने बारे में कुछ संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार का विरोध, अपने आदर्शों के प्रचार तथा अन्य कई कारणों से उनका मन इस ओर विशेष उन्मुख हुआ था।
1: उन दिनों स्वामी जी का मन पत्र पत्रिकाएं निकालने के विचारों से कितना ओतप्रोत था, इसका कुछ अनुमान उनके पत्रों से हो जाता है। वे केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बंगला, हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं में भी पत्रिकाएं निकालना चाहते थे। 29 सितंबर 1894 को उन्होंने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखा था,
2: यदि हो सके तो समाचार पत्र और मासिक पत्रिका दोनों ही निकालो। मेरे जो भाई चारों तरफ घूम फिर रहे हैं वे ग्राहक बनाएंगे, मैं भी बहुत ग्राहक बनाऊंगा और बीच बीच में कुछ रुपए भेजूंगा। पल भर के लिए भी विचलित ना होना, सब ठीक हो जाएगा।
0: यद्यपि समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वामी जी की इच्छा कभी फलीभूत न हो पाई, तथापि उनके जीवन काल में तथा बाद में भी उनकी प्रेरणा से देश विदेश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई तथा हो रही।
1: स्वामी जी ने 25 सितंबर 1894 के दिन अपने एक गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम अत्यंत प्रेरक पत्र में लिखा था,
2: तुम लोगों को एक मासिक पत्रिका का संपादन करना होगा, उसमें आधी बंगला रहेगी और आधी हिंदी, हो सके तो एक अंग्रेजी भी।
0: एक अन्य गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने 1895 में एक पत्र में लिखा था,
2: यज्ञेश्वर बाबू ने मेरठ में कोई सभा स्थापित की है, वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सुना है उनकी कोई पत्रिका भी है, काली को वहां भेज दो, अभेदानंद को, वो वहां जाकर यदि हो सके तो एक केंद्र स्थापित करे और जिससे हिंदी में उस पत्रिका का प्रकाशन हो ऐसा प्रयत्न करे, बीच बीच में मैं कुछ रुपए भेजता रहूंगा।
0: 23 वर्ष हुए पूर्वोक्त लेख स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्री राम कृष्ण संघ के बंगला मुखपत्र उद्बोधन की प्रस्तावना में लिखा था। समन्वय का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय चेष्टा भी करेगा।
1: समन्वय के पुराने अंकों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि इसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख रहा करते थे। समाचारों के लिए अलग स्तंभ था तथा विभिन्न प्रकार की अन्य रोचक सामग्री रहा करती थी, जिससे पत्रिका ने अपने उद्देश्य को पूरा करने में यथार्थ सफलता प्राप्त की थी। किंतु खेद किन्हीं कारणों से 8 वर्षों बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया।
0: इसके बाद हिंदी के रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जगत में कई वर्षों तक अंधकार ही बना रहा, जब तक कि विवेक ज्योति प्रकाशित होकर उसे दूर नहीं कर पाई। सन 1963 ईस्वी में स्वामी आत्मानंद के प्रयत्न से विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा ये हिंदी त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई। उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त करते हुए ये पत्रिका रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सन 1999 ईस्वी से ये मासिक के रूप में निकलने लगी है। आज विवेक ज्योति पत्रिका के करीब 3,000 आजीवन ग्राहक, कुल प्रसार संख्या लगभग 11,250 है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
1: हिंदी जगत के इस अंधकार को दूर करने के लिए एक विवेक दीप का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी से ही प्रेरणा पाकर 1982 ईस्वी से छपरा बिहार से डॉक्टर केदारनाथ लाभ विवेक शिखा नामक हिंदी मासिक निकाल रहे हैं। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद ये उच्च स्तरीय पत्रिका उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त हो रही है और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दे रही है। स्वामी जी की पत्रिका प्रकाशन की इच्छा को पूरा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनके शिष्य आला सिंगा पेरूमल। धन्य हो आला सिंगा, धन्य हो, इतिहास में आपका नाम अमर रहेगा। स्वामी जी के अग्नि मंत्र युक्त प्रेरणादायी अधिकांश पत्र इन्हीं को संबोधित कर लिखे गए थे। 11 जुलाई 1894 के पत्र में स्वामी जी ने आला सिंगा को चेन्नई से अंग्रेजी में एक पत्रिका प्रकाशित करने की उनकी इच्छा का अनुमोदन कर

0: लोगों से भी अधिक से अधिक वार्षिक चंदा भिजवाने की व्यवस्था करूंगा।
1: 6 मई 1895 के पत्र में उन्होंने पत्रिका की आर्थिक सहायता का आश्वासन और अन्य उपयोगी सुझाव भी दिए।
0: वत्स, अब एक काम करो, 1 माह के भीतर ही मैं पत्रिका के लिए कुछ धन भेज सकूंगा। किसी से भिक्षा मत मांगो, मैं अपने मस्तिष्क और बाहुबल से ही सब करूंगा। पत्रिका को बकवादी नहीं बल्कि शांत, स्थिर तथा उच्च आदर्श युक्त होना चाहिए। उत्तम और नियमित रूप से लिखने वाले लेखकों का दल ढूंढ लो।
2: 1 माह के भीतर ही स्वामी जी ने पत्रिका हेतु धन भिजवाया। 28 मई 1895 को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
0: इस पत्र के साथ मैं $100 भेज रहा हूँ। आशा है इसके द्वारा पत्र प्रकाशन में तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी, फिर क्रमशः कुछ और भी सहायता कर सकूंगा।
1: इतने पर भी जब आला सिंगा पत्रिका प्रकाशित करने में विलंब करने लगे, तब स्वामी जी ने 1 जुलाई 1895 को पुनः लिखा,
0: तुम जल्दी पत्रिका प्रकाशित कर डालो, जैसे भी हो मैं बहुत शीघ्र तुम लोगों को और रुपए भेज रहा हूँ तथा बीच बीच में भेजता रहूंगा। कार्य करते चलो, अपने देश के लिए कुछ करो, इससे वे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे।
2: आला सिंगा ने चेन्नई के अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस पत्रिका का नाम ब्रह्मवादिन तथा ध्येय वाक्य एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति रखा। स्वामी जी ने इसका अनुमोदन करते हुए तथा उत्साह देते हुए 30 जुलाई 1895 के पत्र में आला सिंगा को लिखा,
0: तुमने ठीक किया है, नाम तथा ध्येय वाक्य दोनों ही ठीक हैं। तुम्हारे पत्र के लिए सन्यासी का गीत ही मेरा पहला लेख है। निरुत्साहित न होना और अपने गुरु तथा ईश्वर में विश्वास न खोना। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो।
1: पर इतना सब होने पर भी जब पत्रिका नहीं निकली तो स्वामी जी अधीर हो उठे। 4 अक्टूबर 1895 को ब्रह्मानंद जी के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा,
0: जान पड़ता है चेन्नई वाले पत्रिका नहीं निकाल सके, उनमें व्यवहार कुशलता जरा भी नहीं है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।
2: स्वामी जी को क्या मालूम कि इस बीच 14 सितंबर को पाक्षिक ब्रह्मवादिन का पहला अंक प्रकाशित हो चुका था और उस समय वो पत्रिका जहाज में यात्रा कर स्वामी जी को प्राप्त हुई। 24 अक्टूबर को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
0: ब्रह्मवादिन के 2 अंक मिले, बहुत अच्छा, इसी प्रकार किए जाओ। पत्रिका के मुखपृष्ठ को कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करो और संक्षिप्त संपादकीय मंतव्यों की भाषा को कुछ सरल किंतु भावों को उज्जवल करने का प्रयत्न करो। क्लिष्ट भाषा और छंदों को केवल मुख्य लेखों के लिए रख छोड़ो।
1: स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि सदा ब्रह्मवादिन की ओर थी। अनेक पत्रों के द्वारा उन्होंने पत्रिका के बारे में व्यवहारिक सुझाव दिए, आर्थिक सहायता भेजी और अपने मित्रों को इसकी सदस्यता के लिए अनुरोध भी किया। 6 अगस्त 1896 को स्वामी जी ने आला सिंगा को उत्साहित करते हुए स्विट्जरलैंड से लिखा,
0: तुम्हारे पत्र ब्रह्मवादिन की आर्थिक दुर्दशा का समाचार मिला। लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूंगा। अपनी गति धीमी न करना, पत्र का प्रकाशन जारी रखना। डरने की कोई बात नहीं, महान कार्य संपन्न होंगे। वत्स, साहस का अवलंबन करो। ब्रह्मवादिन एक रत्न है, इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे। कार्य करते रहो, तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, ये जानकर कि ब्रह्मवादिन की सफलता से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस पत्रिका को अपना इष्ट देव बना लो और तब देखोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिल रही है।
2: 1 वर्ष तक ब्रह्मवादिन को पाक्षिक रूप में प्रकाशित करने के बाद आला सिंगा ने उसे मासिक पत्रिका में बदलना चाहा, पर स्वामी जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 22 सितंबर 1896 के पत्र में उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
0: प्रचुर लेखों द्वारा पत्रिका का आकार बड़ा कर सकोगे, ऐसा भरोसा यदि ना हो तो उसे अभी मासिक पत्रिका के रूप में रूपांतरित करना मुझे उचित नहीं लगता। अब तक तो पत्रिका का आकार या लेख आशा अनुरूप नहीं है, अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है जो छुआ तक नहीं गया है, और वो है तुलसीदास, कबीर, नानक तथा दक्षिण भारत के संतों की जीवन चरित्र, और ये जीवन चरित्र विद्वतापूर्ण तथा अच्छे ढंग से लिखे जाने चाहिए, न कि ऐसे ही मामूली तौर से अव्यवस्थित से।
1: किंतु कुछ काल बाद ये पत्रिका मासिक में परिणत हो गई और आला सिंगा की मृत्यु के बाद सन 1914 में बंद भी हो गई।
2: ये है ब्रह्मवादिन की जीवन कथा। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। 20 फरवरी 1896 के मद्रास टाइम्स नामक संवाद पत्र ने मत दिया था,
3: दार्शनिक हिंदू धर्म का विद्वतापूर्ण भाष्य करने वाली है और साहित्यिक गरिमा से युक्त है। हाल ही में कई विद्वानों से इसे प्रशंसा मिली है, जिनमें प्रोफेसर मैक्स मूलर का नाम उल्लेखनीय है।
1: मद्रास मेल 7 जुलाई 1902 इसे भारत की अग्रणी पत्रिका के रूप में मान्य करते हुए लिखा था,
3: मद्रास की ब्रह्मवादिन पत्रिका के पीछे स्वामी विवेकानंद का हाथ था। ये वेदांत की प्रबुद्ध व्याख्या करने वाली भारत की अग्रणी पत्रिका है।
1: ब्रह्मवादिन पत्रिका का स्तर इतना ऊंचा था कि भारत या विदेश की आम जनता में इसका लोकप्रिय होना कठिन था। अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख, क्लिष्ट भाषा, संस्कृत का अत्यधिक प्रयोग आदि के बारे में आला सिंगा को सतर्क करते हुए स्वामी जी ने 23 मार्च 1896 को लिखा,
0: मेरी सफलता का कारण मेरी लोकप्रिय शैली है। एक आचार्य की महानता उसकी सरल भाषा में होती है। मैं तुम लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मवादिन इतना अधिक विशेषज्ञ प्रिय बन चुका है कि यहां पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने की आशा नहीं है। किसी मत विशेष का समर्थन भी किया जा रहा हो, ऐसी एक भी बात उसके संपादकीय में नहीं होनी चाहिए।
2: अतः आला सिंगा तथा उनके मित्र नजुंदा राव एवं अन्य मद्रासी मित्रों ने मिलकर जनसाधारण, विशेषकर युवा वर्ग के लिए अन्य अंग्रेजी पत्रिका निकालने का विचार किया। स्वामी जी ने 14 अप्रैल 1896 को डॉक्टर नजुंदा राव को एक अत्यंत प्रेरणादायी पत्र में लिखा था,
0: लड़कों के लिए पत्रिका प्रकाशित करने का जो तुम विचार कर रहे हो उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है और मैं उसकी सहायता करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए। ब्रह्मवादिन पत्रिका पद्धति का अनुसरण करो। केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन शैली तथा विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए। उदाहरणार्थ संस्कृत साहित्य की बिखरी हुई अद्भुत कहानियों को ले लो। उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का ये इतना बड़ा सुअवसर है कि जिसके महत्व को तुम सपने में भी नहीं समझ सकते।
1: ब्रह्मवादिन शुरू होने के 10 माह बाद ही प्रबुद्ध भारत नाम से उक्त पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया। ये नाम संभवतः स्वामी जी का ही दिया हुआ था। स्वामी जी कई पत्रों द्वारा इस पत्रिका के लिए व्यवहारिक सुझाव तथा प्रेरणा देते रहे। 26 अगस्त 1896 को उन्होंने डॉक्टर नंजुदा राव को लिखा,
0: जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
2: विद्वान युवक राजम अय्यर के संपादन में यह पत्रिका एक वर्ष में भारत की सर्वाधिक प्रचारित मासिक पत्रिका हो गई। प्रथम वर्ष के अंत में इसके 3,500 ग्राहक थे। चारों ओर से काफी प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद प्रारंभ होने के ठीक 2 वर्ष बाद ही यानी जून 1898 ईस्वी में इसके संपादकीय में लिखा गया, विदाई। कारण, विद्वान संपादक श्री राजम अय्यर का आकस्मिक निधन। किंतु 2 माह के भीतर ही इसे नवीन उत्साह से पुनः प्रकाशित किया गया, इस बार रामकृष्ण मिशन के मुखपत्र के रूप में, क्योंकि इस बीच स्वामी विवेकानंद ने विदेश से भारत लौटकर सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित ये पत्रिका आज 100 वर्ष बाद भी देश भर में धर्म तथा दर्शन संबंधी श्रेष्ठ अंग्रेजी पत्रिका मानी जाती है। फिलहाल इसके लगभग 7,000 वार्षिक तथा 800 आजीवन सदस्य हैं।
1: ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत के अलावा भी कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रवर्तन स्वामी जी के द्वारा इंग्लैंड तथा अमेरिका से हुआ था।
2: इंग्लैंड में वेदांत पर यह पत्रिका कब, किस नाम से, कितने समय तक प्रकाशित हुई थी, इसकी ठीक जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, परंतु प्रकाशित अवश्य हुई थी।
1: अमेरिका में भी स्वामी जी गुडविन की सहायता से एक मासिक पत्र निकालना चाहते थे। 5 जून 1896 को उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लंदन से लिखा था।
0: गुडविन अमेरिका से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में तुम्हें इस डाक से एक पत्र भेज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य को जारी रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करना आवश्यक है। जिस रूप से वो कार्य करना चाहता है, मैं भी उसी रूप से उसमें सहायता प्रदान करने की यथासाध्य चेष्टा करूंगा।
2: रामकृष्ण मठ के लंदन केंद्र द्वारा इंग्लैंड से भी सन 1952 में एक अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट प्रकाशित हो रही है, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के सिएटल नगर में स्थित वेदांत समिति द्वारा 1996 ईस्वी में ग्लोबल वेदांत नाम से एक नई त्रैमासिक पत्रिका आरंभ की गई है।
1: रामकृष्ण मठ के फ्रांस स्थित केंद्र ग्रेड्स पेरिस से सन 1962 से वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका फ्रेंच में प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार रामकृष्ण मठ के जापान स्थित केंद्र द्वारा जापानी भाषा में एक द्विमासिक फुमेत्सु नो कोताबा अर्थात सार्वभौमिक संदेश निकाली जा रही है। जर्मन भाषा में भी वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका सन 1978 से प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि कई देशों से विभिन्न भाषाओं में वेदांत संबंधी पत्रिकाएं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित होकर निकल रही हैं।
2: श्री हरमोहन मित्र, कई पुस्तकों के प्रकाशक, मास्टर महाशय श्री महेंद्र नाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री जीसी घोष, बंगाल के प्रख्यात कवि तथा नाटककार श्री रामकृष्ण के ये सभी अंतरंगग्रही शिष्यगण एक पत्रिका निकालने में सक्षम थे। वैसे ही स्वामी जी के गुरु भाई काली महाराज स्वामी अभेदानंद, हरि महाराज स्वामी तुरियानंद तथा शरत महाराज स्वामी सारदानंद भी इस कार्य के लिए समर्थ थे। ये तीनों वेदांत प्रचार के लिए विदेश भी गए। इन सभी से निराश हो जाने पर स्वामी जी ने अपना ध्यान अंग्रेजी पत्रिकाओं पर केंद्रित किया।
1: इस बीच अप्रत्याशित रूप से एक युवक पर पत्रिका का भूत सवार हुआ। वे थे स्वामी जी के गुरु भाई सारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतांत। अपनी कम उम्र के कारण इस प्रकार के कार्य के लिए वे गणना में ही नहीं थे। अतः जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों के समीप पत्रिका निकालने का अपना निश्चय व्यक्त किया, तब उन लोगों ने इसे हंसकर उड़ा दिया। तथापि हिम्मत ना हार उन्होंने स्वामी जी की प्रसन्नता का अनुमान हम सहज ही कर सकते। उन्होंने तत्काल स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा।
0: सारदा बंगाल में पत्रिका निकालने की बात कर रहा है, अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें मदद देना ये कोई बुरा विचार नहीं है। किसी को उसकी योजनाओं में निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्रिका के बारे में तुम्हारा विचार अति उत्तम है। पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, कोई चिंता मत करो। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 रुपए तत्काल भेज दूंगा। ईसाई तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं। अब तुम्हें भी अपने ग्राहकों की समस्या है। इसका एकमात्र उपाय है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहो। जहां कभी भी बंगला भाषा का प्रचलन हो, वहां पर लोगों के माथे पत्रिका मढ़ देना। पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। आगे बढ़े चलो। शशि, शरद, काली आदि अब सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाए। बैठे बैठे क्या हो सकता है? तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूद कर सबसे आगे पहुंच जाओगे। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। तूफान मचा दो, तूफान। किसी को चीन भेज दो, किसी को जापान। यह कार्य गृहस्थी द्वारा नहीं हो सकता। सन्यासियों को हुंकार के साथ गरजना होगा, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो।
1: इसके बाद स्वामी जी कई पत्रों द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के लिए जोर देते रहे, पर पत्र पत्रिका का प्रकाशन पिछड़ता ही रहा। मूल कारण था अर्थाभाव। तब स्वामी जी ने मिस मैकलाउड से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा।
0: कोलकाता से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा। यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा।
2: ऐसा लगता है कि मिस मैकलाउड इसके लिए सहर्ष राजी हुई थी, क्योंकि 20 मई 1898 को स्वामी जी ने कुछ रुपए भेजकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा।
0: पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है। 1200 रुपए पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं, उनको उसी कार्य के लिए रख देना।
1: इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 17 जुलाई 1898 को स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी को पुनः लिखा।
0: तुमने जो लिखा है उसमें मेरा वक्तव्य इतना ही है कि बंगला भाषा में पत्रिका को आत्मनिर्भर बनाना कठिन है, किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनाएं, तो ऐसा करना संभव है। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेचारा शारदा एक बार निराश हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कर्मठ और निस्वार्थ हो, उसके लिए यदि 1000 रुपए पर पानी भी फिर जाए तो क्या नुकसान है।
2: अंततः उद्बोधन के नाम से जनवरी 1899 के बंगाब्द 1305 के 1 माघ को पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त 1000 रुपए के अतिरिक्त 1000 रुपए श्री हरमोहन मित्र से ऋण के रूप में लिए गए थे और पत्रिका दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई। प्रारंभ होने के 10 वर्ष के बाद से आज तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है।
1: इस पत्रिका का नाम स्वामी जी ने ही दिया था और उसकी उन्नति के लिए अनेकानेक आशीर्वाद दिए थे। इसकी प्रस्तावना भी स्वामी जी ने ही लिखी थी तथा समय समय पर इसमें कई लेख भी लिखे थे। स्वामी जी इस पत्रिका से कितना प्रेम करते थे, इसका कुछ अनुमान श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती से हुए उनके वार्तालाप को पढ़कर होता है। इस वार्तालाप से ये भी पता चलता है कि स्वामी जी के इस पत्रिका की सफलता, उसकी भाषा तथा उद्देश्य के बारे में क्या विचार थे। अतः इसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा।
0: उद्बंधन देखा है?
3: कैसे?
0: अरे, इस पत्र के भाव, भाषा सभी कुछ नए ढांचे में गढ़ने होंगे।
3: कैसे?
0: श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना ही होगा, साथ ही बंगला भाषा में नया जोश लाना होगा। उदाहरणार्थ, बार बार केवल क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है। विशेषण देकर क्रियापदों का प्रयोग घटा देना होगा। तू ऐसी भाषा में निबंध लिखना शुरू कर दे। पहले मुझे दिखाकर फिर उद्बोधन में प्रकाशित होने के लिए भेजते जाना।
4: महाराज, यह पत्र हर 15 दिन के बाद प्रकाशित होगा। हमारी इच्छा है कि यह साप्ताहिक हो जाए।
0: ये तो ठीक है, परंतु उतना धन कहाँ है? श्री रामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपए की व्यवस्था हो गई, तो कुछ समय पश्चात इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियां छाप कर कोलकाता की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती हैं।
1: स्वामी विवेकानंद जी की पत्रकारिता के बारे में हम अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, इस सभा से विदा लेने का समय निकट आ चुका है, तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 26 जून शुक्रवार को सुबह की सभा में आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि में। वहीं 7:30 वक्त होगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वतन का राग का। कल ये कार्यक्रम गणेश घोष पर आधारित होगा। सुबह 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम आमने सामने। LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर आशा पाठक से चर्चा की है आमने सामने कार्यक्रम में दानिश खान ने। सुबह 9 बजे सुनिएगा वागर्थ और 9:30 का वक्त होगा हमारे विशेष कार्यक्रम का। श्रोताओं, कल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो उसी पर आधारित होगा हमारा कल का ये कार्यक्रम, जिसमें विषय विशेषज्ञ निहारिका पंसोरिया से रत्नेश सोनी ने बातचीत की है। 10 बजे का वक्त होगा परिक्रमा का और 10:30 आप सुनेंगे हिंदुस्तान हमारा। कल हिंदुस्तान हमारा देवी चौधरानी पर आधारित होगा। दिन में 11 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर आधारित होगा हमारा कल का कला कल्लोलिनी। सुनना ना भूलिएगा सुबह 11 बजे। 11:30 का वक्त होगा हमारे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे कल की सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए और दीजिए अनुमति पूर्वक खले को नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।